आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम

0: आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती
3: वंदन वार।

आज का चिंतन। माधव कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे करने में शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं चलता, कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

जी श्रोताओं, अब प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवा देते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। इसका भाग 242 आज प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर और पुनः 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका भाग 7 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार की। सुबह 8 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात आप सुनेंगे और उसके तुरंत बाद 8:15 पर और पुनः दिन में 2 त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आज सुबह आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहत नामा। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत, संपादन रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनते हैं सुबह 11:00, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर बाद 2:30 पर और 3 कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत, संपादन सहयोग काजल भदरगी का है और प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। शाम 5 छाया गीत 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम को आप सुनेंगे 6:30 पर झरोखा, 6:35 पर समय रहेगा संध्या रंजन का। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00, 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 हवा महल के अंतर्गत झलकी मुंशी इतवारी लाल, लेखन नरेश मिश्रा का, निर्देशक विनोद रस्तोगी, झलकी का नाम मुंशी इतवारी लाल। आठ 8:45 पर संध्या समाचार संध्या आप सुनेंगे और रात्रि 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार

कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल विश्वास पर। अनिल विश्वास, माफ कीजिएगा, संगीतकार अनिल विश्वास, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात्रि 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये था आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 242।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्री राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, पंडित जी एक बार फिर स्वागत है आज की इस कड़ी में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी।
1: पंडित जी बताइए कि आपने बहुत सारी फिल्मों में बांसुरी बजाई है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जानकारी है, कुछ श्रोताओं को जानकारी नहीं है, तो हम ये बता दें कि फिल्म देश परदेश है, फिल्म बेताब है जिसमें आपकी बांसुरी की सुरीली तान है, जब हम ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे। तो आप बातचीत के दौरान जिक्र कर रहे थे धर्मेंद्र साहब के बारे में, देव साहब के बारे में।
2: जी, सबसे पहले तो धर्म जी बहुत जिंदा दिल इंसान थे और मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, उसमें एक पंजाबी भी है।
1: जी जी।
2: तो मेरे साथ तो पंजाबी में ही बात करते थे।
1: अच्छा, कौन कौन सी 9 भाषाएं आपको? हिंदी,
2: भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी और भी शायद कोई छूट गया, मैं बोलता हूँ। तो मेरे नाल उन्होंने तो पंजाबी गल करते सन मेरे नाल।
1: वाह।
2: तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे सनी को बेताब में, तो सनी भी स्टूडियो में आया हुआ था और धर्म जी भी आए थे। एक बड़ा मार्मिक एक दृश्य था फिल्म का। उस फिल्म में सनी देओल का बड़ा प्यारा सा एक डॉग था, कुत्ता, और जो उसमें विलेन थे वो सनी को मारने के लिए उस कुत्ते को गोली मार देते हैं, और सनी उस क्योंकि प्यार उसको बहुत ना
1: गले से लगा के
2: रो रहा है, और उसमें मेरी बांसुरी। और केसी लॉर्ड बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए।
1: जी जी।
2: पंचमदा के राइट हैंड एकदम।
1: जी।
2: केसी लॉर्ड ने एकोलाइट लगाया था और मैंने भी दिल चीर के बजाया डी के बांसुरी में।
1: जी।
2: और वो ऐसे कि एक एक स्वर उस कुत्ते के खून बह रहा है और यहाँ बांसुरी में से आंसू निकल रहा है।
1: जी जी। तो वो क्या यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं?
2: वो तो इम्प्रोवाइज था। जब हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं ना, तो हम लोग जैसे कि राग में इम्प्रोवाइज करके एक एक नोट कर करके वो नहीं करते, हम लोग वो सीन के मूड को देखते हैं।
1: जी।
2: जैसे समझिए कि कुत्ता मर रहा है और पीछे बांसुरी बज रही है,

0: गिटार, बांसुरी के अलावा 40-50 वायलिन एक नोट को होल्ड किए हुए थे और उसके ऊपर बांसुरी बज रही थी और साथ में वाइब्रोफोन बज रहा था। और केसी लॉर्ड तो पारसी थे
1: जी जी,
0: और उनका छोटा भाई था भजी लॉर्ड, भजी ना बोलते हैं
1: जी,
0: केसी जी गुजर गए, भजी लॉर्ड अभी जीवित हैं
1: जी।
0: कमाल के लोग, और मैं तो खुद उनका दूसरे कारण से फैन हूँ क्योंकि रूप तेरा मस्ताना में जो उन्होंने एकॉर्डियन बजाया तो वो सेंसुअलिटी एकॉर्डियन से कैसे पैदा हो सकती है ये उन्होंने बताया। और मनोहरी दास जैसे सैक्सोफोन प्लेयर
1: जी
0: उस पे हावी हो गए वो, ये केसी लॉर्ड कर सकते हैं
1: जी जी।
0: तो धर्म जी इतने शेर दिल थे, ओए पुत्र कमाल कर दिता यार, तेरा जवाब नहीं। वो मैनू हंजू हंजू कहते पंजाबी विच, आंसू को हंजू कहते हैं, ते कहते मेरे हंजू आ गए, अखा तो हंजू आ गए। बड़ा बड़ी चंगी बंसरी कहते ने पंजाबी में, कहते बड़ा सुंदर बंसरी बजाया पंचम दा, ओए पंचम ओ कितो लाया ये मुंडे नू, ये लड़के को कहां से लाया। तो उस दिन से उसके बाद उन्होंने स्टूडियो बनाया सनी, उस स्टूडियो का नाम ही रखा उन्होंने सनी
1: जी, जी।
0: सनी सुपर साउंड। मैं जब भी जाता था धर्म जी कभी शूटिंग से आके थोड़ा रिलैक्स होके पांव फैला के बैठते थे तो मैं उनसे जाके हाथ मिलाता था क्योंकि मुझे ये शौक था पहलवानी का थोड़ा।
1: अच्छा,
0: तो मुझे मालूम था ये एक्चुअल रेसलर है
1: जी जी।
0: और एक बार दारा सिंह को उठा लिए थे
1: जी जी, और फिल्मों में तो उनकी दहाड़ मशहूर है।
0: हाँ, तो उनके हाथ को जब मैं हाथ मिलाता था
1: जी
0: तो लगता था कि मैं कुछ 10 हाथ का ताकत और की हाल है, बोल के जब हाथ पकड़ते थे तो लगता था हाथ टूट जाएगा मेरा। उस अनुभव के वजह से मैं हाथ मिलाता था
1: जी जी।
0: ये जो पुराने एक्टर लोग थे, यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी
1: जी,
0: जब हमें और जीने की चाहत ना होती मैं बजाया मैंने तो किशोर दा तो रुला दिए उस गाने को गा के। तो काका हम लोग बोलते हैं राजेश खन्ना को
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो काका उस वक्त भी जाके किशोर दा का पांव छू लिए। अब बताइए किशोर दा तो उनसे बहुत बड़े थे
1: जी
0: उम्र में, मगर इंडस्ट्री में पांव छूने का इतना रीत नहीं है, वो शास्त्रीय संगीत में है
1: जी।
0: उधर तो बस हाय हेलो हाय दादा नमस्कार प्रणाम करने का चलन कम है, मगर काका को मैंने अपने आंख से देखा किशोर दा का पांव छूते हुए कि दादा आज आपने जो गाया मिलन से भी कठिन जुदाई तुम्हारी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते
1: जी, जी।
0: तो दादा ने जिस गाने को भी छुआ उसको अमर कर दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रोग्राम मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने कह दिया था कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बजाता नहीं मगर बजाने में गया, तो चिंगारी जब गा रहे थे तो ऐसे सुर लगाए कि उसके अंत में एक पीस आता है देखिए।

0: ये रन मैं भूल ही गया।
1: जी जी क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और दादा भी दादा, किशोर कुमार किशोर कुमार, उनके जैसा व्यक्तित्व। बहुत दिन से इंडस्ट्री सोच रहा है कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए, मगर उनका रोल करेगा कौन?
1: ऐसा जिंदा दिल इंसान,
0: ऐसा जिंदा दिल, ऐसा कॉमेडियन, ऐसा एक्सेंट्रिक और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या करेगा। जो डाकिया डाक लाया को साइकिल में बैठ के गाया उन्होंने,
1: हरफन मौला तभी तो उनको कहा जाता था।
0: स्टूडियो में साइकिल लाना पड़ा, बोले साइकिल में जाऊंगा तभी, नहीं तो नहीं गाऊंगा।
1: जी जी गजब
0: गजब के आदमी थे
1: बिल्कुल। तो ये तो किशोरदा की बातें हो गई, और देव साहब से भी जुड़ी कुछ बातें।
0: देव साहब से मुझे मिलवाया था बप्पी दा ने, वैसे बप्पी लाड़ी ने, मगर एक फिल्म में मैं पहली बार जो मिला उनसे वो आनंद आनंद, सुनील आनंद, जो बाद में चल नहीं पाए तो लॉन्च किया था उसको। और

0: ये गाना था किशोरदा का
1: जी,
0: और अभिजीत का डुएट था, और अभिजीत को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे किशोरदा
1: जी जी,
0: जैसे बड़े गुरु होता है
1: बिल्कुल।
0: तो वहां भी देव साहब के मैं बहुत खुश हूं इस बच्चे की बांसुरी सुनकर जिंदगी, तो वो हर म्यूजिशियन के पास जाके देव साहब तारीफ करते थे। और उसके बाद देश परदेश, राजू हम लोग राजू भाई कहते हैं राजेश रोशन को, उनका म्यूजिक था देश परदेश में
1: जी,
0: तो वहां भी मुझे पहचान गए, अरे तू कैसा है, क्या हाल है। तो उनके अंदर जो रोमांसिंग विथ लाइफ उन्होंने जो किताब लिखी है वो सचमुच पढ़ने लायक किताब है
1: जी जी,
0: रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद
1: जी।
0: तो देवताओं का आनंद उनके अंदर था,
1: तभी तो सदाबहार हीरो कहे जाते हैं आज भी,
0: देव साहब जैसा कोई नहीं होगा।
1: उस फिल्म में आपकी बांसुरी है ना?
0: मेरी बांसुरी बैकग्राउंड में है।
1: हाँ, तो उसका कुछ टुकड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
0: याद वो इम्प्रोवाइज्ड था पूरा।
1: अच्छा,
0: पूरा इम्प्रोवाइज्ड। टीना मुनिम को उसमें लॉन्च किया था
1: जी जी,
0: और हाँ मुझे याद है उसमें एक सीन में देव साहब रोमांस कर रहे हैं क्योंकि वो उनका उन्होंने उम्र को तो कभी माना ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मरने के बाद कोई फोटो ना खींचे, उनके मरने के बाद का कोई फोटो कहीं नहीं है, लंदन में गुजरे
1: जी जी
0: हाँ, और चुपचाप बोले थे कि मेरा अंत्येष्टि कर देना चुपचाप, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, भगवान के आदमी थे। तो उसमें बजाना था तो चंचल प्रकृति का बजाना था, जैसे हम लोग फिल्म में बजाते हैं तो कैसे होता है कि इतना सा पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है
1: बिल्कुल।

0: इसको ट्रिल बोलते हैं
1: जी जी
0: और
1: अच्छा।
0: फ्लटरिंग ये है ये फ्लटरिंग है और डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा तो हम लोग का तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु कल पेश एक बार जरा तुक तुक सुना दीजिए तुक तुक में गॉड गिफ्टेड है मेरा शिष्य एक सेकेंड उसको सुनिए
1: जी
0: क्या क्लैरिटी है देखिए
1: गजब अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है
0: जीते रहो कल्पेश जैसे वो बोलता है कि मैं भाग्यवान हूं ऐसे गुरु मिले मैं कहता हूं मैं भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला
1: क्या बात है
0: जो इतना सुरीला
1: तो ये चंचल प्रकृति की तान थी बांसुरी की
0: जी जो देश परदेश में मैंने बजाया
1: जी
0: तो जब ट्रिल बजाया तो बोले कि उनका वही अंदाज क्या बात है क्या बात है
1: जी
0: बहुत अच्छे ट्रिल तो बड़ा अच्छा एक एक शब्द उनको मालूम था कि इसको ट्रिल कहते हैं कितना म्यूजिक में वो डीप थे
1: जी जी
0: आपको तो मालूम ही है रफी साहब ने कितना रिटेक किया था गाइड के गाने के लिए
1: जी जी
0: उसमें दुख नहीं आ रहा था
1: हाँ फिर वो रोए थे
0: फिर
1: बैठकर रोने पर फिर वो इमोशनल आया था जी
0: मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आज बेताब का ये शब्बीर कुमार का गाना पर्वतों से आज मैं टकरा गया ये हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए
1: जी

संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति

0: अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कि आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन है, तो उन्हीं को याद करते हुए उनके गीत हमने आज इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं छोटी छोटी बातें, इस फिल्म से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगुली माला, इस फिल्म का गीत मीना कपूर और साथियों के स्वर में। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में अगला गीत फिल्म फरेब से आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत के बोल लिखे हैं, अनिल बिस्वास ने संगीत से सजाया है और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

इस छोटी सी अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत है। अब आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का गीत। पारुल घोष की आवाज में कवि प्रदीप का लिखा गीत है, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
2: तनिया। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अब आपको सुनवाते हैं हमदर्द फिल्म का गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों

ये आवाज थी पारुल घोष की हमारी बात। इस फिल्म का गीत था, पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और अनिल विश्वास का संगीत था।

मुकेश का गाया ये गीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन था, उन्हें याद करते हुए हमने आज कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत आपको सुनवाएं।

कार्यक्रम हम है राही प्यार की, आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। एक बार फिर से स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म से आशा भोसले और रफी मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। शकील बदायूनी ने लिखा है ये गीत और नौशाद का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हम है राही प्यार के बस थोड़ी ही देर में।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद के संगीत से सजा, शकील बदायूनी के शब्दों से सजा ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में राम और श्याम फिल्म से।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम ही रही प्यार की इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेराही प्यार के। आइए आपको सुनवाते हैं गंगा जमुना फिल्म का ये गीत, शकील बदायूनी के शब्द, नौशाद का ही संगीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की स्वर।

0: मॉर्निंग
1: छोड़
0: गुड मॉर्निंग
1: छोड़ हाथ पे
0: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
1: अरे 1 2 3 4 वाला हाथ
0: पे 1 2 3 4
1: मैं कहती हूं
0: 4 अरे 1 2 3 4 1 2 3 4
1: तुमके थप्पड़ रखे
0: आवरते डाबर
2: डाबर काबर
0: डाबर काबर
1: अरे की
0: डाबर
1: आते आवर
3: अब बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
0: कॉफी गेस व्हाट वाटर सैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टीन पटेल

0: लांग लांग फूटा ये पाइप वाला हुका ये सूटा बूटा बूटा सूटा हुका बुका वे वे गुड्डा ले क्यों मेरी जान।
1: गोपी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में। शैलेंद्र के बोल हैं सलील चौधरी का संगीत।

नया दौर इस फिल्म का गीत आपको इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में साहिल लुधियानवी की रचना ओपी नैयर का संगीत

आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत नया दौर फिल्म से आप सुन रहे थे और ये था कार्यक्रम हम है राही प्यार की का आखिरी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचार की प्रतीक्षा कीजिए।

0: के बचाएं।
1: जल है तो हम हैं। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और

0: पांच साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है, इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
0: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को

0: मेंटेनेंस का भी काम करें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देश

0: में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने सीडीएफ से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.1 MHz पर आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटी चैनल है। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की शुरुआत आइए करते हैं बागी फिल्म के इस गीत के साथ जिसे आवाजें दी हैं मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोस ने। इस गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और धुन बनाई है मीत ब्रोस ने।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं केके की आवाज में। बोल लिखे हैं नासिर फराज ने, इस गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने, फिल्म का नाम काइट्स।

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत लीजिए सुनिए, चमेली इस फिल्म से, आवाज सुनिधि चौहान की। इस गीत के बोल

सुनिधि चौहान की गाय चमेली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

0: श्रोताओं, जिंदगी बदलने के लिए एक दिन नहीं बल्कि एक फैसला ही काफी होता है। इन्हीं खास पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ हाजिर है
1: मीता मुल्तानी।
0: श्रोताओं, मानसून का दौर शुरू हो चुका है। आसमान में छाए बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और बूंदों की मधुर रिमझिम हर सुबह को कुछ और खास बना देती है। हर नई सुबह बारिश की हर नई फुहार की तरह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नया मौका लेकर आती है। तो आइए इस खूबसूरत और सुहानी सुबह की शुरुआत करें एक शांत मन के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और ढेर सारी नई उम्मीदों के साथ। लेकिन इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपनी मेहनत, अपने समर्पण और मुस्कान से इस पूरे सफर को सफल और बहुत यादगार बनाते हैं। मिलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अब हमारी तकनीकी टीम से।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख। कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार। कंसोल पर हमारे साथ हैं प्राइमरी चैनल पर नीतू। एफएम पर हमारा साथ दे रही है कविता साखला। और नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरो।

दोस्तों बारिश बारिश एक ऐसा मौसम जिसका इंतजार शायद हर कोई करता है। जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और मिट्टी की पहली खुशबू हवा में घुलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी धरती मुस्कुरा उठी हो। तो आज का हमारा नए नवेले गीतों का सफर समर्पित है बारिश को, उसकी यादों को, उसकी खुशियों को और उन छोटी छोटी बातों को जो इस मौसम को सबसे ज्यादा खास बना देती हैं। अगर आप इस समय कहीं सफर कर रहे हैं, या ऑफिस में हैं, या घर पर हैं, या फिर खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं, और तो सुनते रहिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बारिश सुनते ही सबसे पहले आपको क्या याद आता है, किसी को कागज़ की नाव याद आती है, तो किसी को स्कूल की छुट्टी, किसी को गर्मा गर्म पकौड़े, तो किसी को अपनी पहली मोहब्बत। बचपन में बारिश सिर्फ बारिश नहीं होती थी, वो तो पहली आज़ादी होती थी।
1: जी हाँ बिल्कुल, छत पर नाचना, गली में खेलना, नाव चलाकर उसमें तिराना, पानी में कीचड़ में कूदना और घर लौटते ही घर वालों से डांट खाना। लेकिन सच कहूँ, वो डांट भी कितनी प्यारी लगती थी। आज हम बड़े हो गए हैं, बारिश आते ही सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, कभी रील बनाते हैं, कभी सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन कभी कभी मोबाइल को जेब में रख कर अब बारिश को भी महसूस तो करें। उसकी भीनी भीनी जो खुशबू है, मिट्टी की सुगंध, उसे महसूस करें और एक बार सोचें उन पलों को कि अब कितनी सकारात्मकता आ गई है बारिश से हमारे जीवन में। तो सुनते हैं नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पहली बारिश के बाद मिट्टी से जो खुशबू आती है वो इतनी अच्छी क्यों लगती है? वैज्ञानिक इसे पैट्रिक कोर कहते हैं। लेकिन हमारे लिए सिर्फ खुशबू नहीं है, ये बचपन की यादें हैं और एक सुकून है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। पहली बारिश जैसे हमेशा कहती है, सब कुछ फिर से नया शुरू किया जा सकता है।

0: सिर्फ आपके करने की देर है।
1: बिल्कुल, बारिश मौसम में ताजगी लाती है, ठंडक लाती है, और जैसा हमने अभी पहले भी बात की कि एक सकारात्मकता, पॉजिटिव सोच जो है, क्योंकि एकदम हम फ्रेश हो जाते हैं बारिश में, और हमारे आसपास इतनी सुंदर प्रकृति की जो ये सुरम्यता है ना, वो बारिश में ही नजर आती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, खेतों में फसलें लहलहाती है, नदियों और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो ये जो बारिश है ना, ये हमेशा महसूस करने की चीज है। और अब हम सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: दोस्तों, बारिश और चाय की बात ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर की बालकनी, खिड़की, हल्की हल्की बारिश और हाथ में अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, साथ में पकौड़े या भुट्टा, या फिर सिर्फ अपने पसंदीदा इंसान का साथ, इतनी सी बात पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है।
1: लेकिन दोस्तों, जब बात चाय की और पकोड़े की हो रही है तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बरसात के मौसम में हमेशा ताजा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही करना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। अपनी डाइट में गर्म सूप, उबली हुई मौसमी सब्जियां, अदरक तुलसी की चाय, पौष्टिक खिचड़ी या दलिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में आसानी से पाचन क्रिया को दुरुस्त करती हैं, वे ही बारिश में, मानसून में काम की हैं। क्योंकि मानसून में पाचन क्रिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, इसलिए आप अपने खान पान में बारिश के साथ साथ जरूर ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और अभी हमें सुनना है एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आज की तेज जिंदगी में बारिश कहती है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुस्कुराइए और अपने लोगों के साथ समय बिताइए। बारिश सिर्फ आसमान से गिरने वाली बूंदे नहीं है, ये उम्मीदें हैं, ये खुशी है, ये सुकून है, ये एक नई शुरुआत है। तो इस मानसून अपनों के साथ थोड़ा समय बिताइए, प्रकृति को सम्मान कीजिए और सुरक्षित रहिए, और जिंदगी की हर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए।
1: श्रोताओं, अब 9 बज रहे हैं, हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान का साक्षी भी बनेंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां वे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों को पुरस्कार वितरित करेंगे। विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये योजना छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभावी भाषण कला तथा कौशल विकसित करती है। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भाग लिया। देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से हो रही इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। करौली जिले में पांचना बांध से समझौते के अनुसार सिंचाई के लिए नहरों में पानी का प्रवाह कल फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच देर शाम आई तकनीकी खामी के कारण कुछ देर प्रवाह बाधित रहा। हालांकि जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने पूरी रात तकनीकी खराबी को दूर कर प्रवाह सुचारू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज सुबह जारी बयान के अनुसार तकनीकी समस्या वाले गेट को आज तड़के खोल दिया गया, जिसके बाद नहरों में जल प्रवाह सामान्य हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क अवसंरचना के विस्तार और भविष्य की राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उधर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय व्यय सचिव, राजस्व सचिव और रक्षा सचिव से मुलाकात कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जीएसटी सुधारों और मेक इन इंडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक बिना हेलमेट वाहन चलाने

0: ने तेज रफ्तार अवैध पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष अभियान 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर में यातायात और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कल जयपुर में पर्यटन, पुरातत्व, नगर निगम, यातायात पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आमेर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटकों के सुगम आवागमन और आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि आमेर आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। नीम का थाना में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक राजकीय मातृ और शिशु अस्पताल का राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने लोकार्पण किया। ये अस्पताल प्रधानमंत्री केयर्स फंड से तैयार किया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉ गोविंद छापोला ने बताया कि इसमें आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई, बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी।
1: ये जो महिला अस्पताल बना है नीमका थाना में, ये बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा बना है। कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक के जो आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्पेस है, तो इस क्षेत्र के लिए ये संस्था बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगी।
0: प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश जोधपुर शहर में दर्ज की गई। दौसा, पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू और सवाईमाधोपुर में कई स्थानों पर हल्की तो कई जगह मध्यम बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बाड़मेर जिले में कल दोपहर बाद अंधड़ के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान नोखड़ा इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। सेड़वा, धनाऊ और चौहटन सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।
2: जिले में कल तीसरे पहर तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय के अलावा सेड़वा, धनाऊ और चौहटन समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। नोखड़ा इलाके के गांवों में जमकर बादल बरसे। मानसून की पहली बरसात से किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच किसान खरीफ की फसलों की बुवाई में लग गए हैं। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक उदयपुर और कोटा संभाग के साथ ही पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बरसात की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और इस कार्यक्रम में हम आज दो साथी, मैं मीता मुल्तानी
4: और मैं आपका साथी हिमांशु अवस्थी, करते हैं आपका स्वागत नई जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वो हमें बताता भी है कि किन घटनाओं ने दुनिया की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। तो आइए जानते हैं 7 जुलाई को इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
1: मित्रों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में 7 जुलाई का एक खास महत्व है। 1896 में इसी दिन फ्रांस के सिनेमेटोग्राफर ल्यूमेर भाइयों ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी। इन दोनों ने इस दिन बंबई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, के वाटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। इन फिल्मों को देखने के लिए टिकट की कीमत तब 1 रुपए रखी गई थी मित्रों, और उस समय के अखबारों ने इसे सदी का चमत्कार बताया था। इस कार्यक्रम को दर्शकों का अपार प्रोत्साहन मिला, जिससे प्रभावित होकर जल्दी कोलकाता और चेन्नई में भी फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा और भारतीय फिल्म निर्माण का रास्ता खुला था आज ही के दिन।
0: श्रोताओं, 7 जुलाई 1998 को भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार पंडित विश्वमोहन भट्ट को अमेरिका में प्रतिष्ठित दशाब्दी का सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्ति को सम्मान से नवाजा गया था। मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में विख्यात पंडित भट्ट इससे पहले वर्ष 1994 में ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके थे। भारतीय संगीत को विश्व मंच तक पहुंचाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

0: श्रोताओं, 1912 में आज ही के दिन अमेरिकी खिलाड़ी जिम थॉर्प ने स्टॉकहोम ओलंपिक में 4 स्वर्ण जीतकर तहलका मचा दिया था।
1: श्रोताओं, 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। इस परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और क्षेत्र में समग्र विकास को गति देना था। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में से एक थी।
0: दोस्तों, वर्ष 1928 में आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को स्लाइस्ड ब्रेड की पहली बार बिक्री हुई थी। आज जिसे हम ब्रेड के टुकड़ों के रूप में देखते हैं, इसे मशीन से काटकर उस दिन पहली बार तैयार किया गया था।
1: श्रोताओं, 7 जुलाई 2007 को अमेरिका के डायरेक्ट टीवी 10 संचार उपग्रह को रूस के प्रोटॉन एम रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था।
0: साल 1999 में आज ही के दिन फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पेचिस के नए टीके की खोज की गई थी।
1: श्रोताओं, आज ही के दिन 7 जुलाई 1955 को भारत में पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य वन जीवों के संरक्षण, जैव विविधता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना था। तो श्रोताओं, ये थी 7 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने संगीत, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और देश के विकास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी।

0: दोस्तों आज मंगलवार है और हर मंगलवार की तरह हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट आओ जाने खेल। श्रोताओं, इस सेगमेंट में हम आपको दुनिया के ऐसे खेलों से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में सुनकर कभी हैरानी होती है तो कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो आज बात करते हैं एक ऐसे अनोखे खेल की जिसमें ना बल्ला चलता है, ना गेंद, ना रैकेट और ना ही कोई भारी भरकम उपकरण। इस खेल का मुकाबला होता है पैरों के अंगूठों का। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये खेल दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। इसका नाम है टू रेसलिंग, यानी पैरों के अंगूठे की कुश्ती। इस अनोखे खेल की विश्व चैंपियन हर साल इंग्लैंड के डर्बीशायर क्षेत्र में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में दो खिलाड़ी फर्श पर आमने सामने बैठते हैं और अपने पैरों के अंगूठे को एक दूसरे के अंगूठों में फंसा कर मुकाबला शुरू करते हैं। मुकाबले की शुरुआत टोज अवे के ऐलान के साथ होती है।
1: इस खेल में कुछ कुल तीन राउंड होते हैं ये श्रोताओं। पहला राउंड दाएं पैर से, दूसरा बाएं पैर से और यदि जरूरत पड़े तो तीसरा राउंड फिर से दाएं पैर से खेला जाता है। खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर को ताकत के दम पर एक तय सीमा में, जिसे टो बोर्ड कहा जाता है, तक धकेल कर दबाना। लेकिन इस खेल में सिर्फ ताकत ही नहीं, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुकाबला शुरू होने से पहले रेफरी खिलाड़ियों के पैरों को अच्छी तरह से जांचते हैं ताकि किसी को फंगल इन्फेक्शन या कोई घाव न हो। साथ ही किसी भी तरह की नशीली या उत्तेजक दवाओं का इस्तेमाल इसमें पूरी तरह प्रतिबंधित है। और अब बात इनाम की। हालिया विश्व चैंपियन में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के विजेताओं को 5,000 पाउंड तक की नकद पुरस्कार राशि दी गई, तो इस अनोखे खेल को और भी यह खास बना देता है।
0: तो दोस्तों, दुनिया में खेलों की कोई कमी नहीं है। कुछ खेल हमें रोमांचित करते हैं तो कुछ अपनी अनोखी परंपराओं से हमें हैरान कर देते हैं। टू रेसलिंग भी उन्हीं में से एक है जो ये साबित करता है कि खेल सिर्फ साधनों से नहीं बल्कि जुनून और परंपरा से बनते हैं। तो इसी रोचक जानकारी के साथ आज के आओ जाने खेल सेगमेंट में बस इतना ही।

0: दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी सावधानियां हमें बड़ी मुश्किलों और दुर्घटनाओं से बचा सकती हैं। इसलिए इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी आसान और उपयोग बातें जिन्हें अपनाकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। तो आइए आज की काम की बात जानते हैं। बरसात का मौसम हर किसी की पसंद होती है। ठंडी हवाएं, बारिश की फुहारें और मौसम की ताजगी मन को सुकून देती है, लेकिन इसी मौसम में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी सतर्कता जरूरी है।
1: इसलिए दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखें, गीले हाथों से कभी भी बिजली के किसी स्विच, एक्सटेंशन बोर्ड, चार्जर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ना छुएं। पानी बिजली का अच्छा चालक होता है और आपकी एक छोटी सी लापरवाही करंट लगने जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। श्रोताओं, अगर आपके हाथ गीले हैं तो पहले उन्हें अच्छी तरीके से किसी सूखे तौलिया या कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद ही स्विच ऑन या ऑफ करें या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करें। यदि घर में कहीं बिजली का तार कटा हुआ है, खुला हुआ है या स्पार्किंग कर रहा है तो उसे खुद ठीक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर दें और किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसकी मदद ले सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसी जगह रखें जहां पर बारिश का पानी या नमी ना पहुंचे। अगर आपके घरों में छोटे

बच्चे हैं तो उन्हें भी गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को छूने से मना करें। याद रखिए, दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, लेकिन उनसे बचाव पहले से की गई सावधानी से ही संभव है। सिर्फ कुछ सेकंड की सतर्कता आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती है।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिप में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: अरे मोहन भाई काफी बिजी लग रहे हो
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी पेमेंट लिंक भी भेजा है
3: अरे मोहन भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है धोखेबाज नकली वेबसाइट सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं
4: सच
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें
4: समझ गया
5: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर मोबाइल 9829027065
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

दोस्तों, आज अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारी खास बात। और आज की ये खास बात में चर्चा उस परियोजना की जिसे राजस्थान के औद्योगिक इतिहास का एक बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी को 4 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित किया। यह केवल एक रिफाइनरी नहीं बल्कि राजस्थान के विकास, रोजगार

0: और औद्योगिक भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। करीब 79,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। मित्रों, पहले ये समझते हैं कि ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होती क्या है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी वो होती है जिसे पूरी तरह नई जगह पर शून्य से शुरू करके विकसित किया जाता है, यानी यहाँ पहले से कोई औद्योगिक ढांचा नहीं होता, बल्कि पूरी परियोजना नए सिरे से तैयार की जाती है। पचपदरा की यह रिफाइनरी भी इसी तरह बनाई गई है। इसका निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ और अब यह व्यावसायिक उत्पादन के लिए बिल्कुल तैयार अवस्था में है। खास बात यह है कि यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और देश की 24वीं रिफाइनरी भी यह मानी जाती है। अब बात करें इसकी प्रमुख विशेषताओं की, तो यह परियोजना लगभग 4,400 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि इसका पूरा परिसर करीब 32 किलोमीटर के दायरे में विकसित किया गया है। इसकी वार्षिक क्षमता 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल से इसमें रिफाइन किया जा सकता है। इसमें 29 अत्याधुनिक प्रोसेसिंग इकाइयां भी शामिल हैं। साथ ही इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है, जो इसे भारत की सबसे जटिल और उन्नत रिफाइनरियों में से एक बनाता है।
1: दोस्तों, इस परियोजना का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार और औद्योगिक विकास पर देखने को मिलेगा। अनुमान है कि इससे लगभग 35,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में छोटे उद्योग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, होटल व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी गति मिलने की पूरी तरीके से संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिफाइनरी राजस्थान को केवल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र ही नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल हब के रूप में भी स्थापित करने की क्षमता रखती है। राज्य में निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक आधार मजबूत होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पश्चिमी राजस्थान, जिसे लंबे समय तक सीमावर्ती और रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, अब ऊर्जा और उद्योग के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यही वजह है कि पचपदरा रिफाइनरी को केवल एक परियोजना नहीं बल्कि राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव के रूप में माना जा रहा है।

0: दोस्तों, अब वक्त है उस जानकारी के बारे में जिनका आज के दिन जन्म हुआ है, और उसमें हम सबसे पहले याद करते हैं हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वैद्यशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था, और कैप्टन गैरिट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ख्याति 1915 में सरस्वती मासिक में प्रकाशित कहानी उसने कहा था के कारण हुई। यह कहानी शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है।
1: श्रोताओं, बात भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और लोकप्रिय कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ था। आज पूरा क्रिकेट जगत एक ऐसे खिलाड़ी को सलाम कर रहा है जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया। रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन धोनी ने यह कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। शुरुआत में उन्होंने रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE के रूप में भी काम किया, लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून उन्हें मैदान तक खींच लाया। साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे से डेब्यू शुरू हुआ उनका अंतर्राष्ट्रीय सफर जल्दी भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बन गया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज विकेट कीपिंग और शांत दिमाग ने उन्हें अलग पहचान दिला दी। धोनी की कप्तानी भारतीय क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम अध्याय मानी जाती है। उनकी लीडरशिप में भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वो दुनिया के ऐसे इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों बड़े ICC लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं।
0: धोनी को खेल जगत के सर्वोच्च सम्मानों जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2025 में उन्हें प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। सूझबूझ भरी कप्तानी, मैदान पर शांत रवैया और किसी भी तरह की जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले कप्तान धोनी युवाओं में एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। आज पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।

0: दोस्तों बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 की। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों के बाद क्वार्टर फाइनल की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब पांच बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर पहली बार अंतिम आठ में जगह बना ली। नॉर्वे के इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे अर्लिंग हालैंड, जिन्होंने 89 और 90 मिनट में दो शानदार गोल दागे। ब्राजील की ओर से नेमार जूनियर ने इंजरी टाइम में पेनल्टी पर गोल जरूर किया, लेकिन वो टीम को हार से नहीं बचा सका। वहीं स्पेन ने रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवा लिया है। मैच का इकलौता और निर्णायक गोल इंजरी टाइम में मिकेल मेरिनो ने किया। इस हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 के बड़े अंतर से हराकर अंतिम आठ में जगह बना ली है। आज क्वार्टर फाइनल में उसका सामना स्पेन से होगा, जो इस चरण के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। उधर इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को 3-2 से हराकर शानदार अंदाज में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद इंग्लैंड ने बेहतरीन खेल दिखाया। जूड बेलिंगम, हैरी केन और जेरल क्वांसा के गोलों की बदौलत इंग्लिश टीम ने यादगार जीत दर्ज की और मैक्सिको का घरेलू मैदान पर विश्व कप का सफर समाप्त हो गया।
1: श्रोताओं, कहते हैं कि कुछ लोग अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने साहस और बलिदान से अमर हो जाते हैं। भारत की वीर भूमि ने ऐसे अनेक सपूत दिए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर दिया। उन्हीं अमर वीरों में एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का। आज 7 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उस जांबाज सैनिक को नमन करता है जिसने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन को करारा जवाब देते हुए भारत का तिरंगा गर्व से लहराया और अंततः देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही साहसी, अनुशासित और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मर्चेंट नेवी में शानदार कैरियर का अवसर मिलने के बावजूद भारतीय सेना को चुना। उनका सपना था देश की सेवा करना और कुछ ऐसा कर दिखाना जिस पर पूरा भारत गर्व करे।
0: श्रोताओं, भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें 13 जम

0: बात करवाते हैं। तो दोस्तों हाजिर हूं ये प्रोग्राम लेकर मैं संजय व्यास, मेरे साथ मेरे साथी इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर राजेश लामरोड और हमारे साथ हमारी होस्ट कविता जी साथ में हैं और एक बहुत ही खास मेहमान हम स्टूडियो में आमंत्रित कर चुके हैं और स्टूडियो में आप पधार भी चुके हैं, तो आपसे तारुफ करवाया जाए। आज स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर और शहर के जाने माने स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी एस जोधा साहब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर आपका, बहुत धन्यवाद आने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। हम जानते हैं कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और ख़ास करके डॉक्टर्स हमेशा ये प्रे करते हैं कि 24 घंटे तो बाकी लोगों के लिए होने चाहिए लेकिन हमारे पास दिन जो है वो करीब 25-30 घंटों का होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और हमेशा वक्त की कमी से आप लोग जूझते रहते हैं। तो और इन दिनों आपके पास जिम्मेदारियां भी कुछ बहुत अधिक हैं, तो सबसे पहले तमाम दोस्तों की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस प्रोग्राम में आप आए सर। हमारे दोस्तों को सबसे पहले इस प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जैसा कि एयर इंडिया के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक खास उद्देश्य रहता है कि जिस किसी को भी चिकित्सक को कहीं बुलाए तो जिस सेक्टर का वो चिकित्सक है तो उस चिकित्सा सेक्टर में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, आपके शहर में क्या क्या उपलब्ध हैं और आने वाले समय में क्या उपलब्ध होने की का प्रयास जारी है, अस्पतालों को कैसे सुव्यवस्थित रूप से चलाया जाए जिससे जनरल जो है जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा मेडिसिंस, सर्जरी और सभी डायग्नोस्टिक्स हैं वो सभी के सभी निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं सरकारी सभी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज के स्तर पर भी जितने भी इस डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज का अंडर में 10 अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी जानकारी रहती है। तो मुझे ये लगता है कि जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या जो भी इससे वास्ता रखते हैं उन सबको ये होना चाहिए कि ये सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में सभी को उपलब्ध हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जाना चाहिए और आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, यही हमारा प्रयास रहता है। जब आप अस्पताल पहुँचते हैं या अस्पताल से हम लोग आप को देख के या वैसे राय दे के आपको घर भेजते हैं तो ये हमारा प्रयास यही रहता है कि आप स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल, पिछले कुछ बरसों से जितने भी चिकित्सा सुविधाएं हैं सर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की वो तकरीबन निःशुल्क उपलब्ध है मरीजों के लिए। मरीजों का ये दायित्व है या खास करके उनके परिवार वालों का कि पहले से वो रोकथाम के ऐसे उपाय करें कि वो कम बीमार पड़ें ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो लोड पड़ता है, जो भार पड़ता है वो कम पड़े और बहुत बेहतर तरीके से हॉस्पिटल आपकी सेवा शुश्रूषा कर सके। तो सर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है और इसके प्राचार्य होना एक अपने आप में गर्व की बात है। सबसे पहले इस मेडिकल कॉलेज के अंडर में आपने कहा 10 हॉस्पिटल है तो ये अपने आप में हमारे लिए भी जानकारी थी। मोटा मोटी तौर पे हमारे दिमाग में ये था कि 3 जो बड़े हॉस्पिटल हैं MDM है, MGH है और उम्मेद हॉस्पिटल, ये है और बाकी जो हॉस्पिटल हैं वो चिकित्सा विभाग के अंडर में होते हैं। तो अब क्या प्रशासन में कुछ परिवर्तन हुआ है?
1: कुछ सालों से बड़े जो अस्पताल हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है उनमें मंडोर का हॉस्पिटल है, मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके अलावा पावटा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिलाबाग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का सैटेलाइट अस्पताल, भदासिया की एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उन सबको भी इसके साथ जोड़ दिया है। तो बड़े अस्पतालों में महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल, उम्मेद अस्पताल और KN चेस्ट हॉस्पिटल और इनके अलावा ये जो हॉस्पिटल्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा भी जो मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत दूसरे संस्थान चलते हैं उनमें कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट की नर्सिंग कॉलेज है, पब्लिक हेल्थ कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है तो और डेंटल कॉलेज जो अभी रिसेंटली ओपन हुई है। तो ये सभी जो है संस्थान भी हमारे यहाँ पे जो कार्यरत हैं जिनमें कम से कम 2,500 के आसपास हमारे पास में जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, प्रतिवर्ष इनका इनपुट करीब करीब 800 800 बच्चों का रहता है, तो कुल 2500 बच्चे

0: हमारे साथ में काम।
1: मेडिकल शिक्षा में लगभग प्रतिवर्ष जो है वो कितने बच्चे आते हैं? 250 बच्चे आते हैं?
0: 250 बच्चे तो MBBS की
1: MBBS
0: आते हैं। उसके अलावा जो दूसरी वाली जो ब्रांचेस मैंने आपको बताई उनके अंदर हर एक के अंदर हैं। जैसे हमारे पास में पोस्ट ग्रेजुएट्स आते हैं तो करीब 220 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं। उसके हिसाब से करीब 20 एक हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं। हमारे पास में GR है, जूनियर रेजिडेंट्स, वो अलग आते हैं, 150 के आसपास हैं। तो ऐसे मिला के जो सारी संख्या है मैं आपको आपको बताई वो 2500 के आसपास रहती है जो हमारे साथ काम करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारी फैकल्टी है यहाँ काम करने वाली, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स वगैरह जो काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास नर्सिंग कर्मचारी है, उनकी संख्या करीब करीब 3000 के आसपास नर्सिंग कर्मचारी विभिन्न अस्पतालों में काम करते हैं। तो सभी की संख्या मिला के वो जो हमारा परिवार है वो करीब 5000 के आसपास का परिवार है।
1: बिल्कुल।
0: और वो इसी सेवा में लगा है कि जो 15 से 20 हज़ार के बीच में OPD पेशेंट्स आते हैं और 600-700 के आसपास पर डे का एडमिशन्स होता है। तो उन एडमिशन्स को विभिन्न अस्पतालों में जो इंडोर फैसिलिटी है वो करीब करीब 5000 के आसपास की बेड की स्ट्रेंथ है हमारी। तो पश्चिमी राजस्थान में 5000 की सैयाओं वाले सभी सुविधाओं वाले हॉस्पिटल्स में से बड़े अस्पतालों में गिना जा सकता है, एड्रेस एंड मेडिकल कॉलेज और उसके अटैच्ड हॉस्पिटल्स।
1: यानी 10 से 15 हज़ार मरीज OPD में पर्ची लेकर के डॉक्टर को दिखाते हैं रोज
0: प्रतिदिन।
1: जी, और भर्ती लगभग कितने होते हैं जिनको भर्ती होने की आवश्यकता? 700 के आसपास सारे हॉस्पिटल्स में मिला के?
0: सभी मिला के
1: जी,
0: क्योंकि बड़े अस्पतालों में उसकी संख्या ज्यादा है, छोटे अस्पतालों में वो कम है, 50-60 के आसपास ही है, पर वो मैं आपको जी बता रहा हूँ तो मैक्सिमम उसी।
1: जी, तो बहुत बड़ा काम है सर। और अत्याधुनिक हॉस्पिटल्स में गिनती होती है हमारे यहाँ, जो खास करके मथुरादास माथुर हॉस्पिटल है जिसमें तमाम तरह के सुपर स्पेशलिटी की ब्रांचेज हैं। उसके अलावा जो माता और बच्चों के लिए उम्मीद हॉस्पिटल है, MGH में बहुत सारी ब्रांचेज काम कर रही हैं। तो जो नवाचारों की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से नए डिपार्टमेंट अभी हाल में जुड़े हैं और उनमें क्या ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं? जैसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम सुनते हैं, तो क्या वो भी हमारे यहाँ SN मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ये सुविधाएं भी अब मरीजों को मिलने लग गई हैं?
0: जी, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हमारे जो टोटल यहाँ पे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो करीब 36 डिपार्टमेंट अभी हमारे पास में काम कर रहे हैं। उसमें से 5-6 जो हैं सुपर स्पेशलिटी के हैं। जो नया एडिशन हुआ है, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का एक डिपार्टमेंट अपने पास में मिला है। हम प्रयासरत हैं, एक ट्रॉपिकल मेडिसिन का भी डिपार्टमेंट हमारे को अभी मिला है, रिसेंट में 1 महीना हुआ है। प्रयासरत हैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के लिए हम लोग और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एंड कार्डिक सर्जरी के लिए। तो उनके लिए हमारे चल रहे हैं, जिसमें से NHM द्वारा हमारे को पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट स्टार्ट करने के लिए एक फंड आता है, वो फंड हमको दे रखा है। वो फंड में से कुछ रिलीज भी हुआ है। वो 20 करोड़ की फंड से पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी की एक यूनिट बनेगी, जो छोटे बच्चे, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके हार्ट के ऑपरेशन करने के लिए। क्योंकि नवजात में अगर आनुवंशिक रूप से उनको कोई ना कोई किसी तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीज रहती है तो वो प्रथम वर्ष के अंदर ही बच्चे वो सकम कर जाते हैं ज़्यादातर। तो वो अगर डिटेक्ट हो जाते हैं, पेट में डिटेक्शन तो उनका हो जाता है लेकिन हम पेट के अंदर उनकी सर्जरी नहीं कर सकते। जब वो डिलीवर हो जाते हैं तो उनके साथ में प्रथम महीने में ही उनको कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमको उसके प्रथम मंथ की जन्म के प्रथम मंथ में हमको डिलीवर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जिनको हम 6 महीने 8 महीने 1 साल तक टाल सकते हैं। तो उन सब की सर्जरी के लिए हमारे को एक नया सेटअप हम शुरू करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा वेस्टर्न राजस्थान के लिए। ये डिपार्टमेंट वैसे डेवलप होने वाला था एम्स जोधपुर में, पर वो उसके बाद में लोड के हिसाब से वो हमारे को मिला है। तो हम में उसमें प्रयासरत हैं, NHM द्वारा दिया गया है। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एक है।
1: तो इसके लिए विशेषज्ञ अब आने शुरू होंगे या इसमें पहले से आ चुके हैं?
0: रिक्रूटमेंट वैसे ऑलरेडी हमारे पास में कार्डियक सर्जन है जो सभी तरह के एडल्ट्स को भी ऑपरेट करते हैं और पीडियाट्रिक पेशेंट्स को भी करते हैं। पर जैसे ही हमारे पास में डिपार्टमेंट और फैसिलिटीज़ आ जाएंगी तो जो अब नए लोग सुपर स्पेशलिटी में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के और कार्डिक सर्जरी के होंगे तो हम उनको रिक्रूट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक फैसिलिटी नहीं देते हैं तो हमको उनको रिक्रूट करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम करें क्या।
1: उसी तरह
0: हम उसको डेवलप करके उनको ये हो जाएगा तो हम रिक्रूट करेंगे और वो आ जाएंगे। क्योंकि संस्थानों में काम करना, क्योंकि ऐसी व्यवस्था इतने छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध कराना, उनके बाद में

0: आईसीयू की जो फैसिलिटीज है वो सरकारी संस्थानों में उपलब्ध हो सकती है।
1: बिल्कुल, उसके लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो सरकार उपलब्ध करवाती है
0: जी।
1: और अन्यथा भी सर्जरी छोटे बच्चों की जो खास करके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के साथ में पैदा होते हैं होती ही रही हैं, लेकिन इसके लिए एक निष्ठावान जो विभाग है उसकी स्थापना अब हो रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की संख्या भी काफ़ी है सर, जो दिल में छेद या इस तरह के जो ब्लू बेबीज की तरह पैदा होते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर की तरह हो सकती है। एक चीज़ आपने जिक्र किया सर, ट्रॉपिकल डिजीज, तो ये क्या एक तरह का शोध का काम भी करेंगे या इस तरह की जो बीमारियां जो ट्रॉपिकल एरियाज में होती हैं, हैजे वगैरह, उनके लिए डेडिकेटेड ये विभाग होगा?
0: क्या हो कि डिपार्टमेंट ट्रॉपिकल मेडिसिन के नाम से ये जाना जाता है, तो उनमें उस रीजन की जो ट्रॉपिक्स है उस रीजन में होने वाली मुख्यतः बीमारियों के बारे में उनका शोध भी होगा और उनका उपचार भी होगा। तो उसके डिपार्टमेंट के साथ में ये रहेगा कि कोई मेडिसिन का जो व्यक्ति इतने सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है तो वो थोड़ा ट्रेनिंग करने के बाद उसमें ट्रॉपिकल मेडिसिन का टास्क ले लेगा, तो उसमें हमारे रेजिडेंट्स भी आएंगे, तो उसके रिसर्च की एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट होगी और आसपास के जो जोधपुर रीजन के आसपास जो 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स अपने अंडर में काम कर रहे हैं जो कैचमेंट में हैं हमारे
1: जी,
0: वहाँ से मेडिकल कॉलेज भी बन गई है, तो वहाँ के जो रेफरल्स होते हैं स्पेशली उन बीमारियों के, उसमें आपके टाइफॉइड भी है, मलेरिया के विभिन्न रोग हैं, जॉन्डिस के विभिन्न रोग हैं और ब्रुसिलोसिस हैं, स्क्रब टाइफस फीवर के जो रोगी हैं, तो इन बीमारियों के लिए एक स्पेशलाइज चाहिए। तो वो अब धीरे धीरे जमाना जब स्पेशलिटी का या सुपर स्पेशलिटी का आ जाता तो ये चीज़ें सोची गई कि हम इनको स्पेशलाइज्ड काम के हिसाब से दें तो वो बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर सकते हैं। तो इसलिए एक डिपार्टमेंट का सृजन हुआ है और हम चाह रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में ये काम पे लग जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट यहाँ वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो ऑलरेडी अपने पास में वर्किंग है, उसके पास में सब इक्विपमेंट्स है, हॉस्पिटलाइज करने की फैसिलिटी है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जो करीब उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसके अंदर सभी तरह की सुविधाएं जो आज वेस्टर्न राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट के सैंपल्स आते हैं जिनमें हमको वायरल सैंपल्स देखने हैं कि पर्टिकुलर इस वायरस के कारण कोई बीमार हो रहा है, क्या ये वायरस ऐसा है कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई जो बैक्टीरिया है या कोई इस तरह की पैरासाइट है जो इसको नुकसान करता है, उसको डिटेक्ट करके लोगों को रिपोर्ट करके आगाह करने का काम है। तो ये एक ऐसा सेंटर हो जाएगा जहाँ वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और इन तरह की बीमारियों का भी वहाँ निदान और उपचार दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं मरीजों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनमें पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक प्रगति हुई है और ये और ज़्यादा प्रगति डॉक्टर बीएस चौधा साहब के निर्देशन में होने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, लेकिन एक कुछ सवाल और बाकी हैं जो हम एक ब्रेक लेंगे उसके बाद पूछेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि इतनी सुविधाएं और मरीजों के लिए इतना अच्छा होने के बावजूद हॉस्पिटल अभी भी राशन की दुकानों जैसे लगते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं और उसके लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इसके लिए भी आपके मन में कुछ ज़रूर होगा और वो क्या है वो हम पूछेंगे, लेकिन सर आपकी पसंद का गाना हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं, तो जो हमारे गेस्ट होते हैं वो अपनी पसंद के गाने हमारे इस प्रोग्राम में सुनवाते हैं। आपके लिए समय गाने सुनने का हमें पता है कि बहुत कम रहता होगा, लेकिन फिर भी कई गाने ऐसे होते हैं जो अपने आप को बरसों तक गुनगुनाते रहते हैं, तो आपके मन में कौन से गाने ऐसे आते हैं जो कभी आपकी इच्छा होती है कि सुने जाएं लेकिन शायद समय नहीं मिल पाता होगा, तो आज वो मौका है?
0: जी, ब्लैकमेल फिल्म का है, किशोर दा की आवाज़ में है, बिल्कुल पल दिल के पास।
1: जी बिल्कुल, हमारी होस्ट तैयार हैं इस गाने के साथ। इस गाने के बाद हम फिर से लौटेंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ओपन शो, 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर। आप हमारे साथ बने रहिए।

स्वागत दोस्तों 102.1 एफएम रेडियो सेंसिटी पर ओपन शो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं प्राचार्य डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बीएस जोधा साहब, हमारे शहर के सुपरिचित स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और हमने डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के बारे में और इसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में

0: पूछा, बहुत सारे मरीज आते हैं और एम्स जोधपुर होने के बावजूद मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हो रहा है और हुआ भी है, लेकिन मरीजों की संख्या संभवतः ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आउट नंबर करती हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे। और सर, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि जो लाइनें लगती हैं उसमें मरीज़ एक तो बीमार होता है और दूसरा उसको लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है। इसके लिए आपके दिमाग में कोई ऐसा मॉडल है जो आने वाले समय में हम देख पाएंगे?
1: राजस्थान सरकार ने पूरे जो जितने भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं बड़े, जो जिनको डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन चलाती है, उनके अंदर जो बड़े अस्पताल हैं जिनकी कैपेसिटी 300 बेड से ऊपर की कैपेसिटी है, इंडोर फैसिलिटीज़ हैं, उनके अंदर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का शुरुआत कर दी है, जिसमें से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर में शुरू हो गए। जोधपुर के सिस्टम्स में भी वो पाइपलाइन में है, उनके ऑर्डर्स वगैरह हैं, तो हम नियर फ्यूचर में अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये सिस्टम कर लेंगे। हमने डायग्नोस्टिक में तो ये इस चीज़ को ऑप्ट कर लिया है। अब डायग्नोस्टिक जो भी टेस्ट करवाते हैं, आपके ब्लड सैंपल्स हैं, यूरिन के, स्टूल के, हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल्स हैं, वो सारे के सारे अगर आपने अपना नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे वो अपडेट हो जाएंगे कि बार कोडिंग के साथ में वो सैंपल्स जाते हैं और वो आपके फ़ोन पे उपलब्ध हो जाएंगे, तो आपका क्यू का सिस्टम कम हो जाएगा। अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं, ओपीडी में बैठने की इतनी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ बैठें, और डिस्प्ले मोड पे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का, क्यूएमएस का चल रहा है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डे के दिन जिस व्यक्ति या जिस चिकित्सक को आपको दिखाना है, उसके आपको आपकी पर्ची पे उसका नाम और उसका रूम नंबर, और आपका जब आप एंटर करेंगे तो आपकी एंट्री के ऊपर आपको एक नंबर मिल जाएगा, कोड नंबर, जिसके हिसाब से आपका नंबर पता लग जाएगा कि आपका सीरियल नंबर क्या है, उसको लेके आप बैठ जाएं। डिस्प्ले पे जब आएगा कि आपका 8वां नंबर किसी का चल रहा है और आपका 12वां है, तो आपको 4, तो आप उसी को वेट करते रहें, तो उसके हिसाब से। तो ये सिस्टम हमने सभी अस्पतालों में शुरू करने का है और ऑलमोस्ट सभी के स्टडीज़ होंगे हैं। कम से कम हमको 100 ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स पूरे ओपीडी ब्लॉक्स में सभी अस्पतालों में लगाने हैं और उनको चलाने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए 100 कंप्यूटर ऑपरेटर्स उनके साथ में टाई अप और एडवांस प्रिंटर मशीन्स के साथ में, तो ये सारे सिस्टम्स हैं और वी विल बी एबल टू डू दिस इन कमिंग 3 to 6 months। ये हमारा अभी है, तो इससे काफ़ी सुधार होगा, जिससे लोगों को राहत भी मिलेगी और लाइन वाला है जो उसमें कम मिलेगा। तो ओपीडी में बैठने की सुविधाएं बढ़ाई हैं, उनके पानी की व्यवस्थाएं की है, उनके हवा और उसके लिए कूलर या एसी जहां पे है, तो ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में ने तो एयर कंडीशंस कर दिए हैं, तो ये व्यवस्थाएं रहेगी तो थोड़ा सा राहत मिलेगा मरीजों को।
0: मरीजों की संख्या तो एक वजह है, लेकिन उसके अलावा मरीजों की जो संख्या है उसके साथ में उनके परिजनों का भी बहुत बड़ा नंबर रहता है हॉस्पिटल्स में, तो इस बारे में आप मरीजों को या उनके परिजनों को कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? क्योंकि उनकी सोच ये कि डॉक्टर को बताएगा कौन। मान लीजिए मरीज जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको लगता है कि बीमारी के बारे में उतना पता नहीं होगा, तो हमेशा वो साथ आते हैं। उनके साथ में जैसे मान लीजिए गाँव से कोई आ रहा है, तो शहर में जो उनके होस्ट होते हैं वो भी साथ में आते हैं, उनको लगता है कि मेरी भी ड्यूटी है, वरना गाँव जाके कहा जाएगा कि वो तो हॉस्पिटल तक भी नहीं चला। तो इससे हॉस्पिटल को कुछ दिक्कतें होती हैं?
1: जी, क्योंकि अस्पताल की जो क्षेत्रफल है वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि जो पिछले साल हमारे पास में जो मरीज आए उनके हिसाब से हम जो जो निर्माण कार्य करते हैं या उनका एक्सपांशन करते हैं, वो उसी हिसाब से सोचा जाता है कि हमारे पास में पिछले साल 15,000 ओपीडी के मरीज आए, तो उसके हिसाब से उसकी योजना को बनाया जाता है और वो आगे के 10 से 15 साल 20 साल काम करे। पर जिस तरह से इनपुट रहता है, और आज के ज़माने में जब जब विभिन्न साधनों के माध्यम से मरीज जब किसी दूर क्षेत्र से भी रवाना होता है, तो वो मोबाइल से आपके 10 परिवारजनों को सूचना कर देता है, उनमें से 4 लोग भी अगर उसके साथ पहुंचने को रहते हैं, तो अस्पताल पे ये जो अतिरिक्त भार है उन मरीजों का और उनके परिजनों का जो भार है ना, वो अस्पताल के लिए बहुत कष्टदायक रहता है और मरीज के लिए भी असुविधाजनक है। क्योंकि जब कोई आदमी एक असिस्ट करने वाला रहता है तो और उसके साथ में वो बराबर रहे, उसमें हमारे को दिक्कत नहीं,
0: एक रहे।
1: तो हमें और हम कार्ड भी इसीलिए देते हैं वहाँ पे कि एक व्यक्ति उसके साथ में असिस्ट कराए, जो खाना देने वाला है या नाश्ता देने वाला है उसका कार्ड अलग रहे, और उसी व्यवस्था को अगर परिजन और जो जन

0: होता है उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये इस अस्पताल को अच्छा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, जिससे मरीज जल्दी स्वस्थ हो, ऐसा जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन रहेगा, आप किस जगह से आ रहे हो, आपके जूतों पे क्या लगा है, आपके कपड़ों पे क्या लगा है, आप उस परिसर को कितना गंदा कर रहे हैं, उससे जो अव्यवस्थाएँ और जो इन्फेक्शन फैलता है वो उस मरीज को ही नुकसान करने वाला है। तो जो मरीज या परिजन जो कम इम्यूनिटी का है, तो वो आया तो मिलने था और वो कहीं से दूसरे बीमार से कुछ कुछ लेके जाने वाला है। तो ये चीज़ें सोचने की है। उसमें जब कभी आपको चौकीदार या सिक्योरिटी पर्सन रोकता है, तो उसमें अपने को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि मेरे को कैसे रोक दिया, मेरी तो वो फला जानकारी है, मेरे वो डॉक्टर साहब जानकारी है, मैं वो नेता हूँ। ये इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा रखना चाहिए कि जो व्यवस्था है उसको बनाने में जितना सहयोग पब्लिक कर सकती है उतना ही फायदा रहेगा मरीज के लिए, चिकित्सक के लिए, आपस में बैठ के बात करने के लिए। तो इनमें सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, जिससे हम इनको अस्पतालों को स्वच्छ रख सकें और जो मरीज आपके आए उनको जल्दी से स्वस्थ करके आपके पास में वापस भेज सकें।
1: बिल्कुल, और ये एक ऐसा चैलेंज है जो मरीजों के लिए भी उतना ही है जितना कि हॉस्पिटल प्रशासकों के लिए, और इस पर हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम अपना सहयोग कर सकते हैं। डॉक्टर जोधा, अब एक और गीत हो जाए जो हमारे दोस्त सुनना चाहते हैं, और इस प्रोग्राम में आप कुछ चुनाव करके लाए हैं, तो अगला गीत कौन सा आपकी कोई जानकारी वाला, जो आपने कुछ गीत हमें बताए हैं उन्हीं में से कुछ हो जाए
0: जी।
1: हमारी होस्ट तैयार है और हम उसके बाद लौट के हाजिर होंगे 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, विराम मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में। आज हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर BS जोधा, प्रिंसिपल और सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। और सर आप इस शहर के जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। ये हमारे मारवाड़ में एक थोड़ी सी विडंबना या पैराडॉक्स कह सकते हैं कि अमूमन ये जो विभाग है जिसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो महिलाएं ही होती है, और जब आप इस डिपार्टमेंट में आए होंगे उस वक्त मेरे ख्याल से ये संख्या और भी कम होगी, अब तो ज़्यादा आने लग गई है। तो और जो फेथ या भरोसा आपने अर्जित किया है, तो ये कैसे संभव हुआ और आपका इस डिपार्टमेंट में आना कैसे हुआ, थोड़ा सा ये सवाल जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं।
8: पहले विशेष तौर से राजस्थान जैसे राज्य में पुरुष जो हैं इस सब्जेक्ट जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, स्त्री रोग विज्ञान में काफ़ी कम रहे हैं, पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला उस तरफ काफ़ी रहे। पर मेरा रुझान, मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने उमेद अस्पताल में इंटर्नशिप के दौरान हम लोगों को 1.5 से 2 महीने का कार्य करने का मौका मिलता है, और जिस डिपार्टमेंट, जिस यूनिट में मैं रहा, डॉक्टर तिवारी, कांता तिवारी मैडम रही सीनियर यहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी यूनिट में मैंने काम किया, तो वहाँ काम करने के दौरान जो हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स थे उन्होंने खूब काम दिया। उस काम से मुझे एक थोड़ी प्रेरणा मिली कि ये डिपार्टमेंट है, मैं इसके अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। पर उस ज़माने में हमारा जो सिलेक्शन हुआ करता था मेरिट के बेसिस पे ही रहता था, तो जब ये डिपार्टमेंट की सीटें जो उठती थी तो उसमें यूजुअली सब निकल जाता था, पर किस्मत से मेरी परसेंटेज ठीक थी तो मुझे ये मौका मिला कि मैं इसके अंदर आ पाया। और फिर उसके बाद मैं प्रयास किया, मेरी जो गाइड रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी सचदेव, जो आज भी प्रैक्टिस करती हैं, 80+ में हैं, और जो कुछ भी आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं वो डॉक्टर लक्ष्मी सचदेव और डॉक्टर कांता तिवारी एंड डॉक्टर कौशल्या माहेश्वरी एंड डॉक्टर रंजना देसाई और डॉक्टर इंदिरा भाटी, उन लोगों के साथ सहयोग से, और डॉक्टर शारदा यादव, उन लोगों ने बहुत प्रेरित किया, बहुत चीज़ों में सुधार लाने के। हम लोग जब रेजिडेंसी में होते हैं तो जो वरिष्ठ जन हैं उनको हमको हाथ पकड़ पकड़ कर सर्जरी करना, उसकी जो विधाएं हैं अलग अलग से उनको सिखाना, जो इतना प्रेरणा देना वो बहुत मायने रखता है। तो उस तरह से थोड़ा सा मुझे रहा कि मैं उसमें विश्वास हासिल कर सका मरीजों का भी। और लंबा सफ़र रहता है, और पुरुष चिकित्सक के लिए स्पेशली जब आप स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हो तो आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है कि जिससे आप लोगों को लगे कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तब ये आ जाता है, लोगों को लगता है कि हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये करके आज जिस मुकाम पे हैं वो लोगों की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी है, मेरे गुरुजनों की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे को इस जो काबिलियत आज है, जो कुछ भी, उनकी मेहरबानी से।
7: जी सर, मारवाड़ के लिए एक बेस्ट चीज़ जो हो सकती है वो ये कि महिलाएं अब आगे आकर के और अपने रोग और बीमारी के बारे में बात करती हैं। जैसे आपने जिक्र किया तो आपके लिए दिक्कत जो सांस्थानिक कार्य है हॉस्पिटल में, जैसे प्रसव है, उसमें दिक्कत नहीं आती क्योंकि पूरा हॉस्पिटल प्रशासन होता है। लेकिन जब आप OPD में होते हैं और जो महिलाएं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बात करने में हिचकिचाती हैं, वो किसको बताए, सास को बताए या ना बताए, तो ऐसी दिक्कतें जब आपने शुरुआत की तब किस तरह की दिक्कतें फेस, मतलब आपको करनी पड़ी कि एक मरीज जो है वो ढंग से बता नहीं पा रहा है, तो किस तरह से

0: लोकल लैंग्वेज में कुछ पूछा जाए जिससे कि वो अपनी बीमारी के बारे में बात करना ओके समझे।
1: जी, ये 2000 जब हम रेजिडेंसी में थे, 1988 से 91 में ये रही है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कष्ट, पर हमारे जो सीनियर कलीग्स थे उनके साथ रह के ये आर्ट, जब मरीज़ लगातार 3 साल तक उस व्यक्ति को देखता है, क्योंकि हो सकता है वो मरीज़ पहली बार नहीं आके दूसरी बार भी आ रहा है, पर हमारे प्रयास को देखते देखते वो, और फिर जब हम उस पर मेहनत करते हैं तो उनको लगता है कि जो हमारे को कष्ट है, हो सकता है वो थोड़ा हिचकती है, तो उसके साथ में रहने वाली वो हम थोड़ा असिस्ट करती है। तो ये विधा एक सभी चिकित्सक जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको भी डेवलप करनी पड़ती है। मेरे साथ में तो ये रहा कि मैं यहाँ राजस्थान से हूँ, भाषा मेरी राजस्थानी रही है, तो कनेक्ट करने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, और साथ में धीरे धीरे इसको गेन करने में पर वक्त ज़रूर लगता है। पर मुझे एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिला है, वो फ़ायदा मिला कि मेरी पहले 5 साल की जो सर्विस रही वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रही, वो कालंद्री और सिल्दर, उन इलाकों में चिकित्सक नाम ही ऐसा रहता है, क्योंकि एक चिकित्सक होता है एक पूरे अस्पताल के अंदर, उसको सभी तरह की बीमारियां को देखना है, चाहे हार्ट की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिलीवरी हो, सब कुछ उसी को करना होता है। तो वहाँ जो मैंने 5 साल के अंदर गेन किया है, तो लोगों का फेथ भी गेन किया है, तो उससे मुझे बहुत अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि सभी तरह के मरीजों को देखा जा सकता है। विशेष तौर से जो स्त्री रोग, प्रसूति रोग से थे, तो वहाँ भी हमने अच्छा कार्य किया 5 सालों में वहाँ रहने। तो उसके बाद में वापस 96 में यहाँ उम्मेद अस्पताल वापस आया, पर शुरू के दिनों में जब आप उस फील्ड में आते हो तो आपको वापस नई सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा शुरू में रहा, पर धीरे धीरे काम को देखते हुए और जो मेरे वरिष्ठजनों ने मुझे काम इतना दिया कि उस काम से मुझे मेरे काम के अंदर भी थोड़ी मतलब विलक्षणता या स्पेशलिटी मुझे डेवलप हुई, या फिर थोड़ा बहुत मैंने भी प्रयास किया कि मैं दूसरे जगह पे कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स में अटेंड करके कुछ नई चीज़ें सीख सीख के आया, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी, सोनोग्राफी, तो उससे मुझे थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिला कि जो काम कर सकता हूँ वो उसको मैंने किया, तो उससे थोड़ा मुझे मिला, तो जिससे थोड़ा
0: जी,
1: सा ठीक रहा।
0: और एक अच्छी सुंदर बात यह है सर कि आमतौर पर मारवाड़ जो एक बहुत ही परंपरागत रूढ़िवादी किस्म का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर मतलब मारवाड़ का जो हृदय स्थल है वहाँ पर आपकी ख्याति एक जाने माने विश्व सुपरिचित स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में रही। और इसी तरह का मुझे व्यक्तिगत रूप से जो एक याद आता है उदाहरण, वो बाड़मेर में एक डॉक्टर पुरोहित हुआ करते थे, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट थे।
1: आरएनडी पुरोहित
0: और
1: सर
0: जी सर, तो
1: जी,
0: उनका जब ट्रांसफर हुआ तो वहाँ के लोगों ने प्रयास करके उसको रुकवाने की कोशिश की। तो ऐसे क्षेत्रों में इस तरह का विश्वास अर्जित करना, ये केवल अपनी प्रतिभा, मेहनत और जो हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं के भरोसे हो सकता है। तो आप इस क्षेत्र में और ज़्यादा आगे जाएं, यही हम उम्मीद करेंगे। और अब जो स्थितियां हैं, अब आपको चेंज देखते हैं, अब जो बच्चियां आती हैं आपके पास में, वो ज़्यादा खुल करके बात बताती हैं अपने बारे में, ये एक
1: हाँ,
0: अच्छी बात
1: क्योंकि
0: है।
1: मेरे को इस में प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गए,
0: बिल्कुल
1: सर्विस करते हुए 3 साल मेरी रेजिडेंसी को, तो 38 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि 2 पीढ़ियाँ को हमने इसमें
0: अब जो
1: देख
0: पीढ़ी
1: लिया
0: आई
1: है।
0: है जेन जी, उसमें
1: हाँ
0: कुछ चेंज है
1: हाँ वो बहुत
0: जी?
1: मस्त है, वो
0: बिल्कुल
1: अपनी चीज़ें बहुत खुल के कहती हैं, किसी तरह का उनको वो ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा पहले तो हुआ करता था कि वो कहीं प्राइवेट में जाके कहीं पे बताए किसी डॉक्टर को, अभी हमारे सरकारी अस्पतालों में आराम से बड़े कॉन्फिडेंस से आके बताती हैं कि मेरे साथ ये समस्या है। ये तो ये बदलाव जो है वो शिक्षा के कारण आया, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो बीमारी है उसको छुपाने से वो कभी ठीक नहीं होगी, उसको तो आपको चिकित्सक को बताना पड़ेगा, और जो सच है सच के साथ बताना पड़ेगा, तो चिकित्सक आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो उससे जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है। आप उस बीमारी को लिए लिए 4-6 महीने ले, और उसके साथ में आप कष्ट पा रहे हो, आपके परिवारजन कष्ट पा रहे हैं, और बाद में पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसका रूप हो गया है, कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो हो सकता था कि 5-10 दिन की दवाइयों से हो सकता है। तो ये बदलाव आया है, उन्हीं जैन जी के जो जो बच्चे हैं वो अपने मतलब वरिष्ठ जनों को भी लेके आते हैं, बड़े अच्छे से लेके उनके बारे में बताते हैं कि दादी ने बताया नहीं, नानी ने बताया नहीं, कि ये या मम्मी ने

0: बता पा रही है या, तो आप अच्छे से बताते हैं इनको ये कष्ट है।
1: अच्छा,
0: तो ये चीज हमको बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट उनका एक, उन्होंने जो आज से 40-50 साल की उम्र के हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर बच्चे साथ आते हैं तो वो पूरा डिटेल में बताते हैं और वो हमसे वो पढ़ के भी आते हैं, वो गूगल सर्च करके भी आते हैं, तो हमसे अपडेट लेने की भी कोशिश करते हैं। कई बार हमको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहा है वो भी लगता है, क्योंकि चिकित्सक को लगता है, पर मुझे लगता है कि ये जो जानकारी उन्होंने ली है और उसके बारे में पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है। उनको कई बार हम उसको कहते हैं
1: सर्टेन लिमिट तक अच्छा है, कई बार वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स और उनके बारे में चर्चा करने
0: और वो देना नहीं करें, सिर्फ डिस्कशन तक रखें तब तो अच्छा लगता है, नहीं तो उसमें पढ़ के उसमें से कुछ दवा देना शुरू कर दें उनको लगता है, तो ये चीजें हम उनसे, पर ये अच्छा बदलाव है मैं इसको ये कह रहा हूँ। पर जो कुछ तकलीफें हैं वो भी हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि वो भी आज इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक ये जनरेशन है जिसने हर चीज़ को इतना खुलापन दिया है, तो जो चीज़ जिस उम्र में करनी चाहिए उस उम्र से पहले उस चीज़ को प्रैक्टिस करना, उसकी उसकी रिस्क को झेलना, उसके कारण जो हो रहे हैं दुष्प्रभाव और उसके कारण आने वाले जीवन में जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें जो कष्ट आने वाले हैं उसके कारण उस स्ट्रेस को झेलना, उसके लिए भी जिम्मेवारी उस जैन जी को ही लेनी पड़ेगी कि हमें जो कार्य करना है उसके लिए, आज हमें अगर पढ़ाई का काम है तो उस उम्र में हमें अच्छे से अच्छा जिस फील्ड में जाना है उसके लिए प्रयत्न करना है और आपको संयमित रहना है तभी आप उस फील्ड में आगे। लेकिन अगर जीवन के जो कार्य जिस उम्र में करने हैं उससे पहले आपने शुरू कर दिए तो आपकी जो वृद्धि है वो इतनी कम हो जाएगी कि आप उसके अंदर जो फुल पोटेंशियल है आपका नहीं रहेगा। और उसमें मुझे देख के लगता है कि जो जिस जमाने में जितनी लोगों ने मेहनत की और आज उन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उनमें से वो परसेंटेज अब धीरे धीरे कम हो रही है, और उसका कारण ये है उसके प्रति थोड़ा जागरूक होना भी जरूरी है। माता पिताओं को भी रहना चाहिए और इस जनरेशन को भी रहना चाहिए, हद हर चीज़ की होनी चाहिए, उसकी सीमाओं के अंदर आप रहेंगे अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं इस उम्र में, पर उस ऊर्जा का सही डायरेक्शन में उसका अगर उपयोग करेंगे तो आप राष्ट्र के लिए भी, आप अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे।
1: बिल्कुल, ऊर्जा को सही चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर बात डॉक्टर बी एस जोधा ने कही। इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और गीत हमारे मेहमान की पसंद का, उसके बाद हमारे मेहमान की जो इस प्रोफेशनल जर्नी से कुछ जुड़े हुए और पहलुओं पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम ओपन शो में।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 102.1 एफएम रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में आज विशेष अतिथि हैं डॉक्टर बीएस जोधा, प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। सर, कैसा लगता है जब जिस कॉलेज में आपकी पढ़ाई हुई हो उसी कॉलेज के शीर्ष पद पर आप बैठे हैं? तो मतलब नॉस्टैल्जिया भी साथ में चलता होगा कि यहाँ पर हमारी पढ़ाई होती थी और साथ ही तमाम दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखने का जिम्मा रहता होगा।
1: जीवन का ये खूबसूरत जो पल है और उसका जो मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ ईश्वर का कि जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसी कॉलेज में उस में प्रिंसिपल का पदभार मुझे सरकार ने दिया है, तो उसके निर्वहन का कार्य मैं कर रहा हूँ। पर बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं ग्राउंड्स में हम खेले, कहीं क्रिकेट, कहीं फुटबॉल, कहीं टीटी, आज भी जब मौका मिल जाता है तो पहुँच जाते हैं उन ग्राउंड्स में और उनको सुधारने का भी मन करता है। जहाँ कुछ दिक्कतें लगती हैं उनको देख के कुछ पुराने,
0: क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा उद्दंड हो गए हैं या जैसे पहले आप जैसे आप थे वैसे ही हैं?
1: उद्दंडता का तो माहौल मुझे लगता है कि आजकल थोड़ी सी कम रही है, उद्दंडता दूसरे डायरेक्शन में हो गई है, वो कुछ दूसरे फील्ड में करने लगे। पहले हमारे यहाँ जैसे होते थे कि हम 100 का इनपुट रहता था, तो मुझे लगता है कि शाम के वक्त हम लोग 100 में से 80-90 तो वहाँ ग्राउंड पे ही खड़े रहते थे। आजकल वो नहीं रहता ग्राउंड पे, अब मैं शाम को चला जाता हूँ कई बार पिकल बॉल खेलने, तो कोर्ट पे कम लोग रहते हैं, संख्या कम है। कुछ स्पेशलिस्ट जो इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल में बिजी हैं या उन पे गेम में बिजी हैं या दूसरे कामों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, उनमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो वो ग्राउंड्स पे आना उनका कम रह गया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी जो है बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ रहने के लिए जो प्रयास है उसमें कसरत, व्यायाम, खेलकूद, जिससे आपका संपूर्ण विकास जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन आपकी आपका स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है समाज के लिए। आपके परिवारजन आपके लिए 30 साल तक मेहनत करते हैं कि स्पेशलिटी में आप चलकर निकलो, पर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप उसमें अगर किसी ऐसी बीमारी में पड़ जाते हो या किसी ऐसे फेर में कहीं ड्रग्स लेना पड़ जाते हैं, कहीं अल्कोहल, कहीं स्मोकिंग, तो ये आपके जीवन को बहुत आने वाले टाइम में बहुत कष्ट देने वाले रहते हैं। तो वो जो चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी, उन चीज़ों से बचने का तरीका यही है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें सुबह के वक्त में। ग्राउंड इतना बड़ा है मेडिकल कॉलेज का, अगर उसमें 200 बच्चे भी भागने आ जाएँ तो भी उनके लिए पूरा पर्याप्त स्थान है। उसके अलावा अभी हमने बैडमिंटन का, लॉन टेनिस का, पिकल बॉल का, टेनिस के ये कोर्ट्स वगैरह उनको सबको सुधरवाया, क्रिकेट फुटबॉल के ग्राउंड्स को भी सुधरवाया। तो ये व्यवस्थाएं उनका उपयोग करना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन जो है वो बहुत ज़रूरी है।

0: है, तो मैं स्टूडेंट से और बाकी जो परिजन जो सुन रहे हैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि चाहे आपके घर का बच्चा है उसको इन आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए आप प्रमोट करें, क्योंकि आप आज वो चाहे 4th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में, जब तक वो खेलकूद कसरत नहीं करेगा तो वो उसका जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा। उसका प्रयास करने के लिए माँ बापों को खुद को निकलना पड़ेगा कि सुबह वॉक पे जा रहे हैं, शाम को वॉक पे ले जा रहे हैं, खिलाने जा रहे हैं। ये प्रयास बहुत ज़रूरी है हर माता पिता को, तभी बच्चों में ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उनकी हॉबीज़ डेवलप होगी। अदरवाइज ये बहुत बड़ा जो है आज की तारीख में जो बीमारियां देख रहे हैं वो उनका कारण ये है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर कम है और आपके साथ में आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, आप बाहर का खाना इतना इररेगुलरली इतना फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, और उसकी जो है उसके कारण आप जो है ओपीडी जो हमारे भरे रहते हैं उनके अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सर्जरी के, उनमें ये लगता है कि मेरे को लगता है कि 10 सवाल में से अगर मैं अगर किसी से सवाल पूछूं, 9 को कहते हो ठेले पे कुछ खाया, तो उसमें से 9 यस करेंगे कि साहब खाया, तो रेस्पॉन्स तो 24-36 घंटे में आ ही जाएगा। तो सफरिंग कितनी होती है वो पेरेंट्स के भी लिए, पर पेरेंट्स को भी उतना ध्यान रखना चाहिए कि वो भी साथ, कई बार देखते हैं चलते हुए तो उस ठेले के पास में पेरेंट्स भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं और सारे खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इन चीज़ों में बच्चों को ही नहीं समझाने, उनके माँ बाप को भी उस तरह का
1: जी
0: ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिस्क है। सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं कि आपके बच्चे को जो कष्ट हुआ उसका उपचार हो जाए आज, इसको ही अगर 40 साल पहले अगर लिया जाता है इस तरह का डायरिया वॉमिटिंग में, हमने अपनों को खोते देखा, मेरी तो मदर की डेथ उस कॉलेरा से ही हुई है 1976 में, तो मुझे पता है कि उन दिनों में 3 दिन के अंदर 18 डेथ्स हुई थी, तो
1: जी,
0: हमारे अस्पतालों
1: जबकि
0: से
1: उस वक्त इस तरह का जो भोजन प्रदूषित भोजन वाली परंपरा
0: था
1: ही
0: ही
1: नहीं
0: नहीं,
1: थी।
0: पर वो रिस्क ऐसी थी इन्फेक्टिव इलनेस। अब आपके पास में थेरेपीज आ गई हैं तो हम बचा पा रहे हैं उनको, पर मॉर्बिडिटी तो हो रही है, अस्पतालों पे लोड तो बढ़ रहा है कि अगर आप खान पान पे आप खुद संयम नहीं रखेंगे तो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, बचा के निकाल रहे हैं, पर आपकी इम्यूनिटी तो कम है, आप कहीं भी आपने खाया और आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ें सोचने की।
1: बिल्कुल। तो सर ये एक अपने आप में बहुत बात संतोषप्रद हो सकती है और एक बहुत अच्छी लगने वाली बात है कि जिस जगह पढ़ाई की उसी जगह के आप एक शीर्ष पद पर, जहां आप कुछ बदलने का गुंजाइश रखते हैं और बदलने की आपके पास में सलाहियतें हैं वो हैं, तो हम क्या चेंजेस देख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है पश्चिमी राजस्थान में, खासकर जोधपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, आपके निर्देशन में क्या क्या नई चीज़ें अब आने वाली हैं?
0: जैसा कि अभी मेडिकल कॉलेज जो है, ये एसएन मेडिकल कॉलेज आसपास के जो 8 डिस्ट्रिक्ट की नई मेडिकल कॉलेज है उनके लिए एक पेरेंट इंस्टीट्यूट की तरह एक मेंटर के रूप में काम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वहाँ के सारे रेफरल्स जो होते हैं वो इसी हॉस्पिटल को लेने होते हैं, वो उनको ट्रीट करता है या उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहीं एम्स में या कहीं दूसरी जगह भेजता है, पर ये एक मीडिएशन का सेंटर ये है कि क्योंकि फर्स्ट रेफरल हमारे पास ही आता है। सुविधाओं के नाम पे देखा जाए तो हम जो नई सुविधाएं शुरू करने का है, तो अभी जो नियर फ्यूचर में है IVF का सेंटर जो है राजस्थान सरकार में एक जयपुर से ही है, वो जो पिछले 10-12 साल से कार्यरत है, अब जोधपुर में उसको शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अगले 4-6 महीने में हम उसको शुरू कर देंगे, IVF सेंटर शुरू हो जाएगा। पेट स्कैन की मशीन हमारे पास में आ गई, अगले 2-3 महीने में उसका भी उपयोग, हमारे रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो रहा है, जिस पे सरकार ने हमको कम से कम 230 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, जो उस नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर होगा, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, गायनिक ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, सभी तरह की स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट मिलेंगे, सभी तरह की मशीनें जो आपकी लीनियर एक्सीलरेटर और एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपीज़ और ये सब तरह के जो मॉडर्न गैजेट्स हैं आज की कैंसर सर्जरी के लिए या कैंसर थेरेपी के लिए, वो सभी के सभी उस अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे। हमारे पास में अभी जो नियर में हमने जो एक डेंटल कॉलेज खोला है उसमें 50 का इनपुट आ गया है और सेकेंड ईयर उसका स्टार्ट होने वाला है, और न्यूरो साइंस का एक बहुत बड़ा सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, 6 मंजिला सेंटर है जिसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और साइकेट्रिक सेंटर के हिसाब से 200 बेडेड का सेंटर बनेगा, जिसमें सभी वो कम से कम 125 करोड़ की लागत से वो बन रहा है, अगले 4-6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। तो इस संभाग में ये सुपर स्पेशलिटी का डेवलपमेंट होना और इन सब के कारण जो आज से पूर्व में आज से 5-7 साल 10 साल पहले तक हमारे कोई पेशेंट्स जो है यहाँ से मेडिकल कॉलेज के स्तर से जो है या तो अहमदाबाद जा रहे हैं या जयपुर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे थे, उन सभी मरीजों को इस संस्थान के अंतर्गत जो विभिन्न संस्थान आ रहे हैं उनके अंदर उनका इलाज होना संभव हो जाएगा, तो मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। और जो हमारा प्रयास उस क्षेत्र में है कि हम जल्द से जल्द जो जो चीज़ें हम कर पाएँ, और आने वाले टाइम में अगर सरकार अगर हाइब्रिड मॉडल का एक विचार रखती है तो हो सकता है कि 80% फैसिलिटी के साथ में 20% फैसिलिटीज़ ऐसी हो जिनमें NRI हो, मेडिकल टूरिज्म के लिए आने वाले हो, या जो प्राइवेट अस्पतालों में जो जाके इलाज कराने वाले, तो हमारे चिकित्सक जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनसे अगर वो इलाज कराना चाहते हैं तो उन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए कॉटेज वार्ड्स का, स्पेशल वार्ड्स का डेवलप करें जो चार्जेबल रहेंगे और उनसे अस्पताल का भी जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, और अस्पतालों में नई नई सुविधाएं हैं जो दूसरे मरीजों को जो 80% है उन लोगों को भी मिलने लगेगी, और जो है
1: इन संस्थानों को सुविधाएं निःशुल्क अभी मिल रही हैं वो मिलती रहा करेंगी, लेकिन साथ ही जो अपने चार्ज दे सकते हैं वो चाहते हैं कि मुझे इस डॉक्टर से इलाज करवाना है तो वो कुछ शुल्क के साथ में करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BS जोधा सर, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, और साथ ही सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस प्रोग्राम को इतना सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए, नई नई योजनाओं के बारे में आपने बताया, बहुत शुक्रिया सर आपका।
0: थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
1: 102.1 FM रेडियो सेंसिटी पर ओपन शो प्रोग्राम का सफर यहीं तक, अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ओपन शो।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। मन का रेडियो ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: शालीनता है जिसकी शान,
1: यहाँ पे सब शांति शांति है।
0: सौम्यता है इसकी पहचान,
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी।

सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मन का रेडियो में। घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं और आपके मन का रेडियो पूरी तरह से ट्यून हो चुका है एफएम सनसिटी चैनल के साथ। और आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ कविता सांकला। स्वीकार कीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आसमान में बादल छा चुके हैं, उमस हो रही है, तपिश बढ़ रही है, तभी बारिश होगी। तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत भी इस बारिश भरे गीत के साथ की जाए।

नमस्कार। श्रोताओं, आसमान में बादल छा चुके हैं, उमस हो रही है, तपिश बढ़ रही है, तभी बारिश होगी। तो क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत भी इस बारिश भरे गीत के साथ की जाए।

जी हाँ श्रोताओं, मेघारे मेघारे, कल ये मेघ आकर जोधपुर में इस तरह बरसे कि जोधपुर वासी झूम उठे थे। सुबह सवेरे काले बादलों ने डेरा डाला और फिर झमाझम शुरू। मानसून की ये बारिश जोधपुर वासियों को कल खुशी दे गई थी। श्रोताओं, बारिश सिर्फ आसमान से गिरती पानी की बूंदे नहीं होती, यह कभी बचपन की कागज की नाव होती है, तो कभी गर्मा गर्म चाय की चुस्की, तो कभी किसी अपने की याद, तो कभी नई शुरुआत की उम्मीद। श्रोताओं, पहली बारिश की खुशबू जैसे मिट्टी कहती हो कि हर सूखे मौसम के बाद एक नया मौसम जरूर आता है, शायद हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। मुश्किलों के बाद राहत आती है और उदासी के बाद मुस्कान। तो श्रोताओं, जुलाई का महीना शुरू हो गया है। जुलाई का यह सुहाना मौसम, रिमझिम फुहारे और हाथ में अदरक वाली गर्म चाय की प्याली, बस जिंदगी यही ठहर से जाती है। तो आज मन का रेडियो पर हम और आप मिलकर भीगेंगे उन्हीं यादों की बारिश में। तो चलिए इस सफर में एक और गीत के साथ आगे बढ़ते हैं, किशोर दा की आवाज में इस एवरग्रीन गीत के साथ। सुनिए और अपने मन को भीगने दीजिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन का रेडियो। जी हाँ श्रोताओं, और हम आज बात कर रहे हैं बारिश के मौसम पर, जो हमारी पुरानी यादों है, यादों की बारिश में भीगने पर। श्रोताओं, बारिश के का जो ये मौसम है वो हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए यह पकोड़े और चाय का बहाना है, तो किसी के लिए ऑफिस कैसे पहुंचे इसकी टेंशन कि भाई पूरा रास्ता भीग चुका है, पानी भर चुका होगा, बारिश भी आ रही है, लेकिन ऑफिस पहुंचना जरूरी है। तो किसी के लिए पुरानी मोहब्बत की कोई अधूरी सी याद। श्रोता, बारिश के इस रिमझिम में आपके मन के रेडियो पर कौन सी याद बज रही है? क्या आपको बचपन का वो कागज की कश्ती बनाना याद है? छोटी सी नाव, बारिश का पानी और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। सच में खुशियां बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटे पलों में छिपी हुई होती है। बस जरूरत होती है तो उन्हें ढूंढने की।

श्रोताओं, बारिश का मौसम है। कई लोगों के लिए ये बारिश प्यार की याद लेकर आती है, तो किसी को भीगती हुई सड़कें पसंद है, किसी को खुद भीगना भी बहुत पसंद होता है, तो किसी को खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते रहना पसंद लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बारिश में भीगना नहीं बल्कि उसे महसूस करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए बारिश आफत होती है, तो कुछ लोगों के लिए ये बारिश खुशियों से भरी होती है। जय श्रोताओं, बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक एहसास है। कभी ये बचपन की शरारत बनकर आता है, तो कभी किसी अपने की याद, तो कभी नई उम्मीदों का संदेश लेकर। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, सड़क पर गिरती बूंदे और गर्मा गर्म मिर्ची बड़े, वाह, बस यही तो एक सुकून होता है ना। तो चलिए इस सुकून को इस गीत के साथ महसूस करते हैं।

0: सीख दी जाती है।
1: क्या पता है आपको,
0: बारिश हमें बहुत कुछ सिखाती। शुदा बादल चाहे जितने भारी हो, जितने घने हो, लेकिन एक दिन बरस कर वो हल्के हो ही जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी है। जीवन में अपने मन की बातें अपने अंदर दबाकर हम रखते हैं ना, तो एक घुटन सी महसूस होती है, नकारात्मकता हमें घर कर जाती है। लेकिन इस घुटन को, इस नकारात्मक भाव को हम हटा सकते हैं। जो हमारे मन में जो बातें हैं वो हम अपने अपनों से शेयर कर सकते हैं। उनसे हम हमारे मन की बात शेयर करेंगे तो हम खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा हमारे अंदर आएगी। साथ ही श्रोताओं, एक खूबसूरत बात और है बारिश की। बारिश किसी एक छत पर नहीं बरसती, ना ही अमीर गरीब छोटे बड़े ये भेदभाव करती, वो सभी को एक जैसी ठंडक देती है। शायद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटिव चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन का रेडियो।
3: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना एफएम सुनते।

श्रोताओं, बारिश ये सिर्फ खेतों के लिए नहीं, हमारे मन को भी राहत लेकर आती है। हमारे मन के लिए ये बारिश राहत भरी, सुकून भरी होती है।

ठंडा मौसम और हरियाली हम सभी को तरोताजा महसूस करा देता है। तो यदि आने वाले कल में जब भी बारिश हो तो एक पल के लिए आप जरूर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और उस सुहावने मौसम का आनंद जरूर लीजिएगा। साथी श्रोताओं, इस सुहावने मौसम में जिस प्रकार हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा हम अनुभव करते हैं, उसी तरह ये प्रकृति भी इस सुहावने मौसम में झूम उठती है। तो इस प्रकृति की इस खुशी, ये खुशी इसी तरह बनी रहे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इन पशु पक्षियों की भी इस खुशी को पाकर वो जिस तरह झूम उठते हैं, तो इसके लिए हमें आगे आना होगा, हमें प्रयास करना होगा। क्या? जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि ये मौसम जो है सही समय है वृक्षारोपण का। जी हाँ, ये मौसम वृक्षारोपण के लिए बहुत अच्छा होता है और यही वो समय है जब हम वृक्षारोपण करके प्रकृति की खुशियों को डबल कर सकते हैं। तो क्यों ना आप और हम सभी मिलकर इस सुहावने मौसम में प्रकृति को कम से कम एक वृक्ष का उपहार तो दे, ये छोटा सा प्रयास हम जरूर कर सकते हैं हमारी प्रकृति के लिए।

श्रोताओं, FM सेंसिटिव चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन का रेडियो और आज हम बात कर रहे हैं बारिश के विषय पर। तो श्रोताओं, बारिश एक ऐसा मौसम है जो सिर्फ धरती को ही नहीं भिगोता बल्कि दिलों को भी भिगो देता है। कभी यह बचपन की कागज की नाव तो कभी बचपन में भीगते हुए गांव की गलियों में दौड़ना और उसके बाद अपनी मम्मी से डांट भी खाना, साथ ही कभी चाय और पकौड़ों की खुशबू लेकर तो कभी किसी अपने की मीठी याद बनकर ये बारिश इस तरह हमें भिगो देती है। इसी पर एक शायर ने क्या खूब कहा है, बारिश की हर बूंद में एक कहानी होती है, जो सुन ले दिल से वही असली रवानी होती है। तो इस बारिश को भी महसूस कीजिए, छूकर और दिल से किसी भी तरह पर महसूस जरूर कीजिए।

जी श्रोताओं, बारिश पर किसी ने क्या खूब कहा है, ये मौसम भी कितना अजीब है। अमीर सोचता है कि काश थोड़ी और बारिश हो जाती, और गरीब सोचता है कि छज्जा काश थोड़ा और मजबूत होता। जी श्रोताओं, बारिश सिर्फ रोमांस नहीं लाती, यह धरती की प्यास बुझाती है, हमारे किसानों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है। जी श्रोताओं, यह मौसम है खुशियों को बांटने का। और यदि अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसके पास छाता नहीं हो और बारिश हो रही हो, तो अपनी छतरी में उसे जगह जरूर दीजिएगा, देखिएगा आपकी खुशियां दुगनी हो जाएगी। और अब फिलहाल घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही है और कह रही हैं कि मन के रेडियो की फ्रीक्वेंसी अब यहीं थामी जाए। तो श्रोताओं, वक्त हो चला है इस खूबसूरत सफर को यहीं थामने का, लेकिन जाते जाते इस मौसम को और रूहानी बना जाती हूँ इस गीत के जरिए। खुश रहिएगा, मौसम का आनंद लीजिएगा, लेकिन सुरक्षा के साथ। दीजिए कविता सांखला को इजाजत, छोड़े जा रही हूँ आपको इस गीत के साथ और फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन का रेडियो, आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अरोड़ा,
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो

रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे।

0: चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का पहला गाना है वारिस फिल्म से तलत महमूद और सुरैया की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत अनिल बिस्वास का। आज संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे।

शिव मिले सीता से राम, वैसे तुम भी मिलो, वैसे तुम भी मिलो, वैसे लेकर

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना, मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

Ay, qué.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे।

0: है किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा विंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके विंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बहजाद लखनऊ।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर भाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना क्यों अरे जूट

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल है इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में एहसान रिजवी के बोल हैं।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज विविध भारती के फेसबुक पेज पे जो इबारत हमने लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हिंदी सिनेमा के एक कामयाब अदाकार जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, जो अपनी भूमिकाओं को इतनी सहजता से निभाते कि ये समझना मुश्किल कि ये अभिनय है या वास्तविकता। किरदार कोई भी हो, हर किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। उनका अभिनय लोगों के दिमाग पर ऐसा छाप छोड़ जाता है। एक अति संवेदनशील कलाकार जो ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ऑलराउंडर भी, उन्हें आप अभिनय के पारसमणि भी कह सकते हैं। तो बताइए कौन सी फिल्मों के गाने आज आपको सुनवाए जाएंगे। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के नाम भी लिख दिए हैं, गानों की लाइनें भी लिख दी हैं, और जिन शब्दों का जिक्र हमने किया है, एहसान, सितारे, वीर जवान, ख्वाब, शहर, मोहब्बत और हंसी मौसम, इन शब्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारे गाने भी चुन लिए हैं। तो जो बातें हमारे श्रोताओं ने लिख करके भेजी है उसके बारे में एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि दिलीप कुमार जी के लिए एक प्यारा सा हमारा एहसास, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनका हुनर समय की धूल से कभी भी नहीं ढकता। वे हर बार किसी गीत, किसी दृश्य या किसी याद के बहाने फिर से हमारे बीच याद आ जाते हैं। शायद यही अमर होने का सबसे सुंदर अर्थ है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार साहब को शत शत नमन। हर किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार, कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो पर्दे पर होने वाली घटनाएं सब उनके साथ घटित हो रही है। और सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। तो चलिए एक एक कर हम उनके अभिनय से सजे जो गीत हैं वो आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले गंगा जमुना फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, नौशाद का संगीत। इस गाने में जो अभिनय है उसमें आपको क्या

0: उसकी उसमें आपको क्या विशेषता नजर आती है ये आप हमें लिख करके बता सकते हैं।
1: लागा गोरी गुजरिया से

विवाह सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ जाई है तो मनवा में खटक हुई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

धोबनिया रामा कैसा जादूदार के मन ले गए रे धोबनिया रामा कैसा जादूदार के मन ले गए रे। गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मोला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ जाई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़ कभी दाहिने तो कभी

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका का।

0: सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर
1: चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए
0: जी हां सखियों जिंदगी की राहों में से एक और मुलाकात चुराकर आज फिर से आपसे रूबरू हैं हम आपकी दो प्यारी सखियां
1: मैं हूं आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी तो सखियों एक और प्यारी सखी मेरे साथ बैठी है हंसती मुस्कुराती समीना तो सखियों को और समीना जी आपको भी स्नेह और सम्मान भरा नमस्कार
0: आशा जी आपको भी नमस्कार और हमारी सखियों को भी बहुत ही प्यार भरा नमस्कार

0: सखियों, हमारी आज की ये जो नारी वाटिका है ये बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं घर के उन चिरागों की, उन परिंदों की जो अब धीरे धीरे अपने परों को तान रहे हैं, ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, आज बात होगी हमारे युवा होते बच्चों की, उनके करियर के अंतहीन आसमान की और उस हॉस्टल लाइफ की जो उन्हें कच्चे घड़े से एक मजबूत फौलाद बना देता है।
1: बिल्कुल समीना, बचपन की वो उंगली पकड़ कर चलने वाले दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते एक दिन ये बच्चे जिंदगी के उस चौराहे पर आके खड़े हो जाते हैं जहां एक तरफ सपनों की उड़ान होती है तो दूसरी तरफ अपनों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की कश्मकश। करियर का चुनाव करना सिर्फ एक प्रोफेशन चुनना नहीं है बल्कि अपनी एक अलग पहचान गढ़ना है।
0: बिल्कुल आशा, और जब यही बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के लिए घर की चौखट पार कर हॉस्टल की दुनिया में कदम रखते हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक कमरे में शिफ्ट नहीं होते बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं, और सारी चीज़ें उनको कैसे खुद ब खुद करना आनी चाहिए ये सारी चीज़ें वो सीखते भी हैं। तभी तो किसी ने बड़े ही खूबसूरती से लिखा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है, क्या बात है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुनने वालों, अगर आपका बच्चा भी इस वक्त करियर के कश्मकश में है या घर से दूर किसी हॉस्टल में अपने सपनों को सींच रहा है तो आज का ये शो

0: सीधा आपके लिए है और बिल्कुल आपके दिल को छुएगा। आज हम साझा करेंगे उनकी उलझने, उनके करियर ऑप्शंस और हॉस्टल लाइफ के वो खट्टे मीठे अनुभव जो उन्हें कल का लीडर बनाएंगे।
1: तो चलिए उड़ने देते हैं ख्वाबों के परिंदों को।

0: आशा, ऐसा होता है ना कि तेज आवाज में टैपिंग की आवाज से शांत सुबह की शांति जो है वो भंग हो जाती है। और एक नन्ही सी बच्ची रसोई के काउंटर के पास रखी कुर्सी पर खड़ी होकर काल्पनिक कंप्यूटर टैब पर करने का नाटक कर रही होती है ना, और बीच बीच में कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिख रही होती है और वो काम करने का नाटक कर रही है, जबकि माँ कुछ ईमेल निपटाने की कोशिश कर रही है।
1: बिल्कुल इसी तरह और भी हमने बच्चों को देखा होगा, उसके भविष्य के सभी जो संभावित करियर के बारे में वो सपने देखते हैं। हो सकता है कि चांद से प्यार करने वाला बच्चा जो

0: ज्योतिष बने और किचन में बेकिंग में मदद करने वाला पेस्ट्री शेफ। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे खेल खेल में टीचर बन जाते हैं, है ना, और बच्चों को दूसरे जो छोटे बच्चे उनको पढ़ाते हैं, या कभी ग्रुप के अंदर लीडरशिप उनको करते हुए देखते हैं, वो समस्याओं को सुलझाते हैं। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते तो संभावनाएं अनंत लगती है, लेकिन अपने बच्चों की करियर विकल्पों के बारे में सोचना जितना मजेदार है ना समीना, उतना ही जरूरी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखें कि जो पेरेंट्स हैं और जो देखभाल करने वाले के रूप में हम उनके सपनों पर कितना प्रभाव डालते हैं।
1: बिल्कुल यही बात है। और इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा आठवीं या नौवीं या ग्यारहवीं बारहवीं में पहुंचता है तो घर का माहौल है ना, कई बार ऐसा लगता है कि वॉर रूम जैसा हो जाता है। हर तरफ बस एक ही चर्चा होती है, कोचिंग, कॉलेज, मार्क्स और करियर। और हर रात माता पिता के दिल में एक कश्मकश चलती है कि कहीं मैं बच्चे पर जरूरत से ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रहा, या फिर कहीं मैं उसे गाइड करने में कमी तो नहीं छोड़ रहा।
0: दुविधा बिल्कुल लाजमी है समीना। आप बच्चे को सुरक्षित भविष्य चाहते हैं आप उसका, लेकिन जरा सोचिए क्या करियर का चुनाव सिर्फ आपके जो बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं या सेफ सरकारी नौकरी तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: असली करियर वो है जो बच्चे की स्वाभाविक खूबियों और इंटरेस्ट से मेल खाए।
1: बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में उन जादुई सवालों की जो हर माता पिता को अपने बच्चे से या खुद से जरूर पूछने चाहिए, ताकि आप उन्हें सही दिशा दिखा सके। और हाँ, अगर आप इन जादुई सवालों को नोट करना चाहते हैं तो हमारी सखियां बिल्कुल नोट डाउन कर सकती हैं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी कश्मकश में होंगी या उनको भी कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा।
0: तो बच्चे की रुचि और समस्या सुलझाने का अंदाज क्या है? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए आपका बच्चा समय भूल जाता है? चाहे फिर वो घंटों रोबोटिक्स किट से खेलना हो या दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल का कोई इवेंट प्लान करना हो, ये पल बताते हैं कि बच्चे को अंदर से ऊर्जा कहाँ से मिल रही है।
1: बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि बेटा बड़े होकर तुम क्या बनोगे, है ना? इसकी जगह आप ये पूछिए कि तुम्हें किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगता है, तुम्हें किस गैजेट को ठीक करना अच्छा लगता है, या दोस्तों के बीच का झगड़ा अगर आपका बच्चा अच्छे तरीके से सुलझा सकता है, क्योंकि हर जॉब असल में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है तो वह अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, और वो अपने से भी ये सवाल करेगा कि मैं ऐसा हूं तो क्यों हूं।

0: तो आशा जी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का करियर चुनाव में बहुत सारी कशमकश होती है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। तो पेरेंट्स के लिए शायद स्टेबिलिटी और अच्छी सैलरी जो है वो सफलता की परिभाषा में आ सकता है, या किसी बच्चे को भी ऐसा लग सकता है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के लिए इसका मतलब क्रिएटिव फ्रीडम या कुछ अलग करने का जज्बा हो, है ना, उसकी सोच कुछ अलग हो। इसके साथ ही आप अपने बच्चे से ये पूछिए कि वो किसे अपना आइडियल या रोल मॉडल मानता है और क्यों मानता है। अगर वो किसी क्रिकेटर या यूट्यूबर का फैन है तो सिर्फ उसकी शोहरत ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी मेहनत और क्रिएटिविटी के बारे में उसका दिल कैसे उसको पसंद करता है, ये सवाल भी आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं।
1: और इसके साथ साथ बच्चों के व्यवहार को समझिए कि वो माहौल में बेहतर परफॉर्म करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एकदम सेट रूल्स और फिक्स्ड रूटीन में चमकते हैं, तो कुछ को खुला आसमान और नए एक्सपेरिमेंट्स पसंद होते हैं। याद रखिए, कैक्टस और कमल दोनों खूबसूरत है पर दोनों का माहौल अलग होता है। और सबसे बड़ी बात जो समीना आती है वो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, इस बात को मैं डबल अंडरलाइन करना चाहूंगी कि फेलियर या आलोचना का सामना आज के समय में सबसे बड़ी बात है। और फेलियर और आलोचना का सामना आपका बच्चा कैसे करता है, क्योंकि करियर का रास्ता सीधा सड़क नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो मुश्किल वक्त में वो अपनी कौन सी ताकत का इस्तेमाल करता है, रचनात्मकता का या अपनों के साथ का, और उस साथ का या रचनात्मकता को वो यूज करके अपनी मुश्किल से बाहर निकलता है या डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ माँ बाप को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और बच्चों को भी कम्फर्ट जोन से निकलने की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो उससे पूछे कि अगर दुनिया में पैसों की कोई चिंता ना हो तो फिर तुम क्या करोगे। इस सवाल को मजाक में मत उड़ाइए। अगर वो कहे कि मुझे दुनिया घूमकर वीडियो बनाना है, तो उसके पीछे छुपे रोमांच और उसके स्टोरी टेलिंग के हुनर को या फिर उसके वीडियोग्राफी के हुनर को पहचानिए। रिस्क यानी जोखिम के बारे में उसकी क्या राय है। अगर वो अनिश्चितता और स्टार्टअप के रोमांच के लिए तैयार हो जाता है या फिर उसे बैंकिंग और सरकारी सेवाओं जैसी स्थिरता पसंद है, तो दोनों ही जो रास्ते हैं वो अपनी अपनी जगह करियर चुनने के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं।
1: और एक्सपर्ट टिप ये है कि आपका बच्चा किस बात के लिए लोगों से थैंक यू सुनना चाहता है, दूसरों की मदद के लिए या कुछ नया क्रिएट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। यही सबसे बड़ी उसकी गहरी प्रेरणा है जो उसको आगे बढ़ाते हैं। और समीना देखो, माता पिता के रूप में हर माता पिता अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए अंदाजा मत लगाइए, उनकी इन शक्तियों को पहचानिए। जब करियर का फैसला बच्चे की कमियों को सुधारने के बजाय उनकी जो खूबियों को बढ़ाने में, उनकी खूबियों को निखारने में किया जाता है, तो मंजिल तक का सफर बोझ नहीं एक खूबसूरत सफर बन जाता है।

0: बिल्कुल, जब अगली बार अगर आपको ऐसा लगे कि आपका किशोर या किशोरी खुद को खोया हुआ या परेशान महसूस करें, तो उसे कोई सुरक्षित करियर विकल्प सुझाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसके बजाय आराम से बैठें, शायद चाय पीते हुए या कुछ बातें करते हुए या किसी शांत यात्रा के दौरान इन 10 सवालों में से अगर कुछ सवाल या एक सवाल आपने पूछा, और कभी कभी सही सवाल जब पूछते हैं ना हम, तो निर्णय लेने में वो जो सवाल होते हैं वो मार्गदर्शन ही नहीं करते बल्कि उसके लिए बिल्कुल सटीक भी बैठ जाते हैं। तो ये आपके बच्चे की खूबियों को उजागर करते हैं और उन्हें और आपको दिखाते हैं कि करियर को उनकी वास्तविक खूबियों के रूप में बनाया गया है, तो उसके लिए क्या क्या संभव है और उसके लिए आने वाले भविष्य के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं।
1: क्योंकि ऑप्शंस जब भी आपको मिलेंगे तब आप उस पर गहराई से विचार करेंगे, सोचेंगे, बच्चे के अंदर से कुछ निकालेंगे, क्योंकि बच्चे का मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धू होता है।

0: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

चाहे कितना भी बुद्धू सा मन हो, कहीं ना कहीं उसको अपने दिमाग की टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को। और उसको कहीं ना कहीं ट्वेल्थ के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में, या फिर यही कहें कि ट्वेल्थ के बाद में या ट्वेल्थ से पहले, आजकल तो टेंथ के बाद में ही बच्चों को कुछ स्ट्रीम्स को चुनना पड़ता है। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम आज के समय में बेहतरीन और नए ज़माने के उनमें तीनों ही स्ट्रीम्स में नए करियर ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं। जहां आप पारंपरिक धरे जैसे कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या बैंक क्लर्क से हटकर हाई पेइंग और क्रिएटिव फील्ड्स आ चुके हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं और

0: करियर को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं।
1: और जहां आपने साइंस की बात की तो बिल्कुल सभी जानते ही हैं कि साइंस भी दो भागों में डिवाइड है, पीसीएम और पीसीबी। तो पीसीएम यानी मैथ्स ग्रुप के लिए डेटा साइंस एआई इंजीनियर वर्तमान में बहुत ज़्यादा ये डिमांड वाला क्षेत्र है, और उसके अंदर भी अगर आप आते हैं तो इसमें डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होता है। और समीना, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, कंपनियां और सरकारों के डेटा को हैकर से सुरक्षित रखना, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो एरोस्पेस और रोबोटिक्स है ना, इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स और रोबोट्स डिजाइन करना, और आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट डिजाइनिंग की अगर बात करें तो उसमें बिल्डिंग्स या गैजेट्स के प्रैक्टिकल और खूबसूरत डिजाइन तैयार करना। और पीसीबी की अगर बात करें बायोलॉजी ग्रुप के लिए तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स, मेडिकल फील्ड में नई तकनीकों, दवाओं और डीएनए रिसर्च पर भी काम किया जा सकता है। इसी तरह से न्यूट्रिशियन और डाइटिशियन यानी वेलनेस और फिटनेस इंडस्ट्रीज के बढ़ने से इसकी मांग इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी है। और फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च यानी कि नई दवाओं की टेस्टिंग पर रिसर्च की जो जाती है उसको। और पारंपरिक मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसमें एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष और वेटरनरी जो है, पशु चिकित्सक जो होते हैं, उसमें भी जाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ पैरामेडिकल या जो फॉरेंसिक लैब वगैरह जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे जो है करियर ऑप्शंस चुने जा सकते हैं।
1: और इसके अलावा भी अगर हम खोजते हैं इन चीजों को तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसके अंदर भी किस में आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, किस में जाना चाहते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो अगर आपके बच्चे को नंबर्स, बिजनेस, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में दिलचस्पी है तो यह फील्ड आपके बच्चे के लिए बहुत ही जो बहुत ही बढ़िया है। बड़ी कंपनियों का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मर्जर और एक्विजिशन को संभालना, ये सबसे हाई पेइंग जॉब्स में से एक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट और जैसे सीएसीएस जो कि हम सभी जानते हैं कि जोधपुर जो है सीएसीएस की खान है, तो इसमें ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है बच्चों को अगर कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके अंदर भी टैक्स है, ऑडिटिंग है और कॉरपोरेट कानून के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन मिलते हैं। डेटा एंड बिजनेस एनालिटिक्स है और बिजनेस के डेटा को देखकर ये तय करना कि कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए, या स्टॉक मार्केट है ना, शेयर बाजार जो हम कह रहे हैं स्टॉक मार्केट, तो ये जो सारे ई कॉमर्स और सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट है, ऑनलाइन बिजनेस और प्रोडक्ट की डिलीवरी है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, या कॉमर्स के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके जो नैन है, उनके जो आंखों में जो सपने हैं वो बहुत ऊंचे हैं, और वो अपनी खुली आंखों से जब सपने देख रहे हैं तो उनको पाएंगे ही पाएंगे।

0: बच्चों के सपने जो है वो अनंत हैं, और उन अनंत सपनों के चलते बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो ख्वाब है वो पूरा होना चाहिए, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने या हम CA CS बने। लेकिन समीना, इसके अलावा आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले ये होता था कि आर्ट्स लोग लेना नहीं चाहते थे, कि ये मानते थे कि आर्ट्स के अंदर ऑप्शन कम है, लेकिन अब आर्ट्स सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और जो इंसानी व्यवहार को समझने वाले भी बेहतर करियर ऑप्शन है, जैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है या पॉडकास्टर है, यूट्यूबर है, स्क्रिप्ट राइटर है, या PR यानी पब्लिक रिलेशनशिप जो होती है उसके अंदर जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, तो बहुत उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आप आर्ट्स भी चूज करते हैं।
1: आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जो है उसमें UI UX डिजाइनर है ना, मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स का लुक और यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, है ना, इसे डिजाइन करना। इसके लिए एक बात और है कि इसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं होती, केवल क्रिएटिविटी को विजुअलाइजेशन करना होता है। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में अपनाए जा सकते हैं।
0: एक समीना, मैं आपको बताऊं, आजकल जो समय है ना, मेंटल हेल्थ जो है लोग उसके प्रति बहुत अवेयर है, और साथ साथ में आजकल मेंटली जो प्रॉब्लम है ना वो भी बहुत बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल, और बच्चों को इस एज में हो जाती है, वो करियर सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाते, तो उनके सामने भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत सारी उभर कर आती
0: और
1: है।
0: इसी कारण ही क्लिनिकल और कॉर्पोरेट काउंसलर्स की मांग बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो IAS IPS और जो ये सारी पोस्ट है ये तो है ही है, UPSC स्टेट PSC की तैयारी या कॉर्पोरेट क्रिमिनल लॉयर बनना, ये सब कुछ आर्ट्स में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन है, और डिप्लोमेसी की बात करें तो दूतावास या इंटरनेशनल NGO में काम करना, बाहर विदेशों में इसके रूप में काम करना, ये सारे ऑप्शन आर्ट्स के अंदर ही आते हैं।
1: बिल्कुल, और जहां बात करते हैं करियर के चुनाव की, तो बहुत से करियर ऐसे हैं आज के समय में मौजूद जिसके लिए किसी भी करियर ऑप्शंस में जाकर, किसी भी स्ट्रीम में जाकर के, और आप उन करियर को चुन सकते हो। या आप अगर किसी भी करियर को या किसी भी स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हो और करियर चुनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्किल

0: नहीं रखती, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं या सोशल मीडिया मैनेजर जो हैं, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, एनिमेशन और वीएफएक्स आर्टिस्ट जो होते हैं, उसके लिए किसी स्किल की तो ज़रूरत है लेकिन किसी स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी खुद का बिजनेस शुरू करना है, आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में हो, है ना, तो ये करियर ऑप्शंस के रूप में आप इनको चुन सकते हैं। तो चाहे तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस आपको ये देखना है कि ये पूरी धरती आपकी है, पूरा आसमान आपका है, आप किसको चुनते हैं ये आपकी खुद की जो है वो चॉइस होनी चाहिए।
1: तो आप जिन राहों पे कदम बढ़ाते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे बिजनेस पैतृक भी हो सकता है, चाहे आप अपने लेवल पर कुछ भी नया आपके शौक आपका जो शौक है उसको आगे बढ़ा के उसी को बिजनेस के रूप में लेना चाहते हैं, या इस तरह से कोई साइंस आर्ट्स या कॉमर्स के आप उसको चुनकर आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, तो ये चॉइस आपकी है। लेकिन ये इन राहों में जब आगे बढ़ेंगे तो मंजर नए नए होंगे, बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी, और उन मुश्किलों को आप झेलते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका सफ़र बहुत ही खूबसूरत होगा।

0: तो समीना, अब बच्चे से हमने सवाल पूछ लिए हैं कि उसको कौन सा ऑप्शन पसंद है, वो साइंस फील्ड में जाना चाहता है, आर्ट्स या कॉमर्स में, अभी तय हो चुका है और
1: बिल्कुल
0: अब उसको जाना है बाहर, घर से दूर, शहर से दूर,
1: नए मंजर की ओर
0: अपनों से दूर। तो ये वो घड़ी होती है एक माता पिता के लिए, ये पल वो बहुत ही एक अजीब सा होता है, सुकून भरा भी होता है, साथ में मन में एक डर भी होता है माता पिता के कि उसी बच्चे की उंगली पकड़कर हम उसे चलना सिखाते हैं, और एक दिन वही बच्चा जब अपने पंख फैलाकर आसमान को नापने के लिए तैयार हो जाता है, तो बच्चे करियर बनाने, अपने सपनों को सच करने के लिए घर की चौखट को पार करते हैं।

0: तो थोड़ा सा घर सूना हो जाता है, लेकिन दिल जो है हमारा गर्व से भर भी जाता है।
1: बिल्कुल, पर सवाल ये है कि जब हमारा कलेजे का टुकड़ा या हमारा जो बहुत करीबी जो हमारा बच्चा है वो जब हमसे दूर जा रहा है या किसी अजनबी शहर में जा रहा है, तो हम उसकी पोटली में कौन कौन से संस्कार या कौन कौन सी शिक्षा बांध कर भेजें? तो सबसे पहली जो चीज़ हमें उनको देनी है वो है आत्मविश्वास की उड़ान और जड़ों का सहारा, है ना। उनसे कहिए कि बेटा तुम आसमान में जितनी ऊंचाई तक जाना चाहो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी जो जड़ें हैं वो इस घर से और यहाँ के संस्कारों से जुड़ी हुई है, और नए शहर की चकाचौंध में अपनी सादगी और अपनी पहचान को कभी भी मत भूलना।
0: और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि बच्चे को ये सिखाएं कि अकेलेपन से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मुश्किल होती है तो ना मम्मा होती है, ना पापा होते हैं, ना आस पड़ोस से होते हैं कि आपकी एक आवाज़ सुन के दौड़े चले जाएं। तो घर पर माँ खाना खिला देती है जब भूख ना हो, लेकिन बाहर उन्हें अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना होता है ना। उन्हें सिखाइए कि कामयाबी सेहत से बढ़कर नहीं है, और हाँ उन्हें यह भरोसा देकर भेजिए कि चाहे कितने भी मुश्किल आए वो खुद को कभी अकेला ना समझे, उनके माता पिता हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं।
1: बिल्कुल, और कई बार बच्चे नए शहर में जाकर असफलताओं से डर जाते हैं, या अपने से जो होशियार बच्चे हैं या जो बहुत अच्छे मार्क्स अभी शुरुआत में ला रहे हैं उनसे भी डर जाते हैं, या तो उन्हें जाते जाते ये जरूर कहिए कि बेटा अगर कभी थक जाओ या कभी हारने लगो या कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो डरना मत, ये घर और तुम्हारे माता पिता वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो कभी भी तुम्हें जज नहीं करेंगे, और तुम्हारा सुरक्षित ठिकाना भी यही घर है, तो तुम बेझिझक वापस आ सकते हो। और ये जो एक वाक्य जो है ना आशा, ये बच्चों को डिप्रेशन से और गलत रास्तों से निकालने में बड़ा ही मददगार साबित होता है।
0: तो ईमानदारी का रास्ता, करियर की होड़ में कभी अपने जमीर से समझौता मत करना, ये जरूर बच्चे को सिखाएं।
1: बिल्कुल, पैसे की कद्र करना भी बच्चे को सिखाएं, क्योंकि मेहनत की कमाई की अहमियत समझना और जो बजट फ्रेंडली जो चीजें हैं उनको अपनाना, ये हमारे सबसे बड़े दोस्त होते हैं।
0: साथ में बच्चों को जब विदा करें तो ये भी सिखाएं कि सच्चे रिश्तों की पहचान कैसे की जाए, भीड़ बहुत मिलेगी लेकिन अच्छे और सच्चे दोस्तों को परखना बच्चे को सीखना ही होगा।
1: बिल्कुल, और मुस्कुराहट और धैर्य का साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि धैर्य जब आपके अंदर होगा तभी आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी।
0: और साथ में इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि बच्चे को सिर्फ विदा मत कीजिए, उन्हें दुआओं और हौसलों के साथ विदा कीजिए, रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए कहिए कि जाओ बच्चे अपनी तकदीर खुद लिखो, हमारा जो ब्लेसिंग्स है, हमारा जो आशीर्वाद है हर पल तुम्हारे साथ है, और तभी बच्चा जो है उड़ेगा और अपनी सफलता से उड़ान भरेगा और आसमान तक पहुंचेगा।

0: तो जब बच्चे को हम हॉस्टल में भेज रहे हैं, उसकी हमने तैयारी कर ली, उसको संस्कार और शिक्षाएं सारी दे दी, लेकिन हॉस्टल कैसा है इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो ये पेरेंट्स के लिए सबसे पहले चिंता का विषय रहता ही है कि वो बच्चा बाहर जब जाएगा तो वो इसके लिए पूरी जाँच पड़ताल भी करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हॉस्टल का माहौल कैसा है, वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, हॉस्टल के वार्डन का बच्चों के प्रति बिहेवियर कैसा है, वहाँ के कमरे कैसे हैं, जहाँ हॉस्टल है वहाँ के आसपास का माहौल कैसा है, खाना पीना कैसा है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें, और हॉस्टल में कोई गतिविधि जो है ऐसी गलत गतिविधियाँ तो नहीं हुई है, इन सारी छोटी मोटी जो बातें हैं इन पर पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इन सारी बातों पर जो है जाँच पड़ताल करने के बाद में ही बच्चों के लिए हॉस्टल का चयन किया जाना चाहिए।
1: क्योंकि हमने बच्चे को बहुत समझा बुझा के भेजा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है बिल्कुल अलग होती है। जब समस्याएं सामने आती है, जब माहौल सामने आता है, जब बच्चा अकेला वहाँ रहता है, घर के हिसाब से उसको खाना नहीं मिलता, किसी और मतलब स्टेट में चला जाता है, तो खान पान बिल्कुल ही डिफरेंस
0: हो जाता है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज है।
1: तो जब खाना ही उसको नहीं मिलता तो वहाँ सारी चीजें एक बार तो रुक जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यहाँ जब हम हॉस्टल चुनते हैं या कोई जगह चुनते हैं तो बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अब मुझे आदत डालनी पड़ेगी। तो हॉस्टल डालने
0: नहीं,
1: से पहले
0: आदत तो आशा जी पहले से घर से ही डलवा कर भेजी जाए, या उसको पहले, चाहे लड़का है या लड़की, इस मंच के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आज के समय में सभी समान है, तो लड़कों को भी किचन का जो कामकाज है वो जरूर आना चाहिए, वरना वहां जाकर के उनको अपनी पसंद का खाना बनाने में हिचकिचाहट होगी या आता ही नहीं तो कैसे सीखेंगे।
1: तो बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों को हॉस्टल में डालने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्टल का वातावरण कैसा है, इसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, और किस हॉस्टल में आप भेज रहे हैं, उसकी हॉस्टल की जो रेपो क्या है पिछले कुछ वर्षों से वो कैसी है, या वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संगति वो कैसी है, कहीं वो गलत संगत के शिकार में तो नहीं है, क्योंकि संगति से बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और कई बार ऐसा भी देखने आता है कि संगति के प्रभाव से बच्चा नशे की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, जो उसके करियर को, उसकी लाइफ को, उसके घर को पूरा बर्बाद कर देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही सुरक्षा के प्रबंध, जहां हम बात करें गर्ल्स की, तो लड़कियों को अगर भेजने की बात आती है तो सुरक्षा प्रबंधों की जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहां के गार्ड कैसे हैं, वार्डन कैसे हैं, उसके साथ ही साथ में आसपास का वातावरण कैसा है, वहां पे जो कैमरा वगैरह की फैसिलिटीज़ है या नहीं, या रूम में जो है वो किस तरह की सिक्योरिटी है, लाइट की, पानी की व्यवस्था है या नहीं, बाथरूम्स किस तरह से बने हुए हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी भी पूरी होनी चाहिए। और हर तरह बच्चों को हम इस तरीके से बातचीत करें कि बच्चों को ये ना लगे कि वो अकेले हैं। हो सकता है थोड़ा सा समय लगेगा माहौल में ढलने के लिए, लेकिन उनको ये विश्वास दिलाते रहें कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं।
1: क्योंकि कारण ये है ना, जब बच्चा 12th में बम्पर मार्क्स ले आता है, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो पेरेंट्स तो ये उम्मीद लगा ही देते हैं और बच्चा खुद भी कि अब तो मेरा भविष्य बन चुका है, लेकिन रास्ता अभी भी चल रहा है, अभी भी मंजिल मिली नहीं है, अभी भी सावधानियां बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों को हॉस्टल में डाल रहे हैं, अच्छे मार्क्स उनके आ चुके हैं, लेकिन वहां जाकर बच्चे तनाव में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, जो कि बहुत ही एक दुखद पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी घटना होती है अगर बच्चा कॉलेज में जाके या पढ़ते वक्त आत्महत्या

0: कर लेते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बच्चे को मतलब बार बार उसको फोन करते रहें, उसका सारा हाल जानते रहें, उसकी मन की बातें समझें, वो क्या कह रहा है, उसका मन लग रहा है नहीं मन लग रहा है, अब जो उसको पढ़ाई समझ आ रही है, उसको माहौल समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस बात का विशेष रूप से पेरेंट्स ध्यान रखें।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक बार वो पढ़ाई में असफल हो जाए चल जाएगा, है ना, बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, बच्चा एकदम से दूसरा ऑप्शन चुन लेता है जो अभी तक उसने चुना, उसके ऑपोजिट भी चुन सकता है वो,
1: क्योंकि रास्ते खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
0: लाइफ तक खत्म हो गई एक बार तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ में टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि यहाँ स्कूल वाली लाइफ से निकल करके जब वो यहाँ पे पहुंचे हैं, अब उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना भी बच्चों को आना चाहिए, और जब टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा तो फिर जो उसका दिल चाहता है वो कर ही

0: तो दिल चाहता है, और जब दिल चाहता है वो स्ट्रीम्स हमें मिल जाती है और करियर में भी सफल होने लगते हैं ना। तो हॉस्टल की लाइफ जब वहाँ रम गए हैं है ना, तो वहाँ की जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी लगने लगती है। यानी आज़ादी का पहला एहसास, नए दोस्त, नई जगह, देर रात तक उनके साथ में बातें करने का भी मौका मिलता है, वीकेंड्स पर घूमने फिरने का प्लान भी बनता है, मनोरंजन और दोस्तों के साथ आउटिंग इस लाइफ का बहुत खूबसूरत सा हिस्सा होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस आज़ादी के साथ में आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं कि किस तरह से घूमते फिरते हुए फुल एंटरटेनमेंट के साथ में हम होश रखते हुए सावधानी को भी साथ में बरतें और जोश में, जोश को बरकरार रखें लेकिन होश को ना खोएं।
1: तो हॉस्टल लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहली बार ग्रुप बनाकर बाहर निकलते हैं ना, तो चाहे फिर वहाँ आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे कहीं सुनसान रास्ता है, या कोई नया कैफे है, या फिर शहर का कोई अनजान कोना जहाँ आप घूमने निकल पड़े हैं बेबाक रूप से, आज़ादी से। लेकिन बेहद ज़रूरी है, सावधानियाँ हमेशा याद आपको रखनी ही पड़ेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं उसकी लोकेशन को शेयर करें। तो आप अपने ग्रुप के साथ में कहीं जा रहे हो, इसकी जानकारी अपने हॉस्टल के वार्डन, रूममेट या फिर घर में मम्मी पापा को ज़रूर दे करके जाएं। और आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को लाइव लोकेशन शेयर करना भी बहुत ज़्यादा

0: जरूरी होता है।
1: और आसपास के वातावरण पर एकदम पैनी नजर रखें और मस्ती के मूड में भी आसपास के माहौल को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें क्योंकि कोई कौन आपको आपकी जो एक्टिविटी है आपको इस एंजॉय को आपकी इस मौज मस्ती को बहुत ज़्यादा देख रहा है, तो उसका आप ध्यान रखें कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। और अगर आपको लगे कि जहां आप घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित नहीं है या वहां मौजूद कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, तो बिना झिझक बिना संकोच पहली बार में आप वो
0: जगह
1: तुरंत वहां से हाँ निकल जाएं और अपनी गट फीलिंग पर हमेशा भरोसा करें।
0: बिल्कुल, आपातकालीन नंबर हमेशा अपने साथ में रखें, लोकल पुलिस, एम्बुलेंस, कॉलेज हॉस्टल के अधिकारियों के नंबर हमेशा हमारे स्पीड डायल पे होने चाहिए, और अगर जब आप गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमेशा फुल चार्ज रखें या फिर आपके साथ में पावर बैंक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: तो सखियों आपको बता दें कि हम सभी के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें रिचार्ज करता है, लेकिन याद रखिए असली समझदारी इसी में है कि हमारी मस्ती किसी भी तरह की मुसीबत में ना बदले, क्योंकि आप जब माता पिता के तौर पर आप जब बच्चे को ये सिखाते हैं तो बच्चा ये जरूर ध्यान रखे कि अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहे और अपने आप को मजबूत बनाए रखें।
0: बिल्कुल।

0: तो सखियों, आप समय हो चला है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते हमें ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है नारीवाटी का, ये कुछ कुछ आपसे जुड़ा हुआ महसूस हुआ होगा, और आपको बहुत सारी गाइड्स जो है, चीज़ें जो है वो सही भी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब चलते चलते आपको टीम नारीवाटिका से रूबरू करवा दें कि ट्रांसमिशन से आज हमारे सहयोगी रहे पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख, और कंट्रोल रूम से हमारा सहयोग किया सुनील जयपाल ने, और एफएम ट्रांसमिशन से हमारे साथ थे सीएल सोनी।
1: और कंसोल से इस पूरे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया उगम सिंह राजपुरोहित ने, संयोजन थे मनीष सोलंकी, और इसके साथ थी आपकी दो प्यारी प्यारी सखियां, आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी और मेरे साथ थी
0: समीना। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1।

0: एक मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान

0: बिंबांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग

0: मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आज

0: जीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार साहिल उद्यान भी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: सखी सहेली

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारी सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, आनंद रहें।
2: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं, बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल से पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है।
1: लाइक कमेंट आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया।
2: जी, इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया।

0: है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं.
1: वक्त कितना चला जाता है जी. दीपा जी आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन
0: जी
1: जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट. तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है. और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं. तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून. तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं.
0: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का

0: है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं, तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून। तो उनके क्या अनुभव है वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
1: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है कुछ जाना है।
0: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाए।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं, और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं। हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
0: देख तो रहे हम भी
1: जी,
0: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं, और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसके फेर में नहीं पड़ते हैं
1: जी।
0: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले 250 कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं
1: जी। बिल्कुल
0: याद है
1: जैसे आपको? याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
0: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी, लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो बस सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
1: जी।
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे,
1: वैसे ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते
0: तो
1: थे।
0: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती
1: जानते है। बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे। जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं, कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए। और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास
0: बैठ जाता है,
1: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह, जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की, किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं.
0: अच्छा अच्छा. वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का.
1: कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है.
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी.
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी.
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं. उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की. और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है. तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है. तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं
1: जी. ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है
0: जी.
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था. खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा.
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया. कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से एमबीए पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया. साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी.
1: बिल्कुल. और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी. तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा. लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं.
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है. इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया. वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल. इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी
1: जी. और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक, उन्हें अगर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का

0: भविष्य भी बदल सकता है और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल जो उनकी कंपनी है आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
1: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा
0: जी।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के CSR कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूं तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। हुआ यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी.
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप.
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना.
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है.
0: जी बिल्कुल.
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं. अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बापरे अब क्या करें. और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है. कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं. सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं. वायरल से मतलब प्रसिद्धि है.
0: और
1: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं.
0: बिल्कुल. और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है. किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया. और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है.
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर. आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है.
0: जी, तो पड़ जाता है.
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया.
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया. और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले

0: ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए
1: जी।
0: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
1: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
0: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही है। एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक पहुंचाए
1: हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है, अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं।
4: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
3: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है। देखिए, इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।
4: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है ममता जी, ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं, वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से,
4: जी,
3: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं। पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं, असहमति थी,
4: जी।
3: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल
4: देती है, मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़ी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें। अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं।
3: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
4: हाँ, ये बात
3: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए, और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ, ये किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान

0: बनाने के चक्कर में उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है।
1: जी बिल्कुल, तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है, और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल है। अभी जो हमारे घरों में दादी नानी और चाची जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं, और कुछ लोग
0: और
1: अपना डांस
0: तो
1: का
0: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
1: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नहीं तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
0: बहुत सारे,
1: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया पर
0: नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचे, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
1: और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
0: जी।
1: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: जी
1: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।